नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से

0: मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

Chintan. किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली डलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 होने को है और आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 219। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला गजतत वाद्य। इस कार्यक्रम का भाग 3 आज आप सुनेंगे कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारुबाला खरे की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:00 और 7:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और इसी के तुरंत बाद 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 2 सुबह 10:00। विविधा के अंतर्गत आज दिन में 11:00 सुनिए निर्देशक राज खोसला पर आधारित शोध और आलेख स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दिन में 12:00 सुनिए हिंदी समाचार और 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। कमेंट्स के साथ फेसबुक पर तय कीजिए सुरीला सफर। दिन में 1:00, दिन में 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर और मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3:00। पर सुनिए नाट्य तरंग में नाटक अभिशप्त गांधार का भाग 2, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम दिन में 4:00। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 3 हम आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:00, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार और शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। संध्या रंजन में सुनिए चित्रपट संगीत। संगीत सरिता शाम में 6:45 पर आप सुनेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। विशेष जयमाला आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य।

लगा था। महावीर चक्र दीवान रंजित रॉय, लेफ्टिनेंट कर्नल, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। हवा महल के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटिका कागज के जेवर, लेखन अभिलाष का, निर्देशन पुरुषोत्तम दार्वेकर का। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा 8:15, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि का छायागीत कार्यक्रम होगा 10 बजे, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे विविधा। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 219।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जसलमेल क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

0: गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फागुन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। कमर जलालाबादी ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अमर अभिनेता और गायक कलाकार भारत भूषण को। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम सुनेंगे उन्हीं के कुछ सदाबहार गीत जो आज भी दिलों में वही मिठास और अपनापन जगाते हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। बरसात की एक रात इस फिल्म से है, साहिर लुधियानवी ने इसके बोल लिखे हैं, रोशन का संगीत है और इस गीत को स्वर दिए हैं आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों ने।

श्रोताओं, भारत भूषण जी भले ही स्वयं गायक नहीं थे, लेकिन संगीत प्रधान फिल्मों में उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली रही कि उनका नाम सुनते ही मधुर गीतों की पूरी दुनिया याद आ जाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, रचना शैलेंद्र की, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शबाब फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद की धुन।

0: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: और आइए अब सुरैया की आवाज में सुनते हैं राजपूत फिल्म का ये गीत। कैफ इरफानी ने इसके बोल लिखे हैं और हंस राज बहल ने इसकी धुन बनाई है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: भूले बिसर गीत इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम मल्हार, मुकेश की आवाज, कैफ इरफानी के बोल, रोशन का संगीत।

0: प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
7: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, धुन बनाई थी रोशन ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी, फिल्म का नाम बरसात की रात।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: और आइए अब आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुनवाते हैं फागुन फिल्म का ये गीत। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा है, ओपी नैयर की धुन।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चित्रगुप्त ने

0: कहना
1: क्यों माने
0: संभल के चलना
1: क्या जाने
0: यही तो मौसम
1: मस्ती में जीने का है।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

0: हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में अब आपको सुनाते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

शैलेंद्र का रचित ये गीत सुनिए अब, जिसकी धुन बनाई है एसएन त्रिपाठी ने, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे, इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिर

आदित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।

0: दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी सांझ विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।

दोस्तों, दिन भर की आपाधापी, संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बछड़ों के पास आना, रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है, जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है। ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।

दोस्तों, सांझ हमें सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम के अगले नगमे। रावण फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अकॉन और हमसिका अय्यर की आवाजों में। विशाल ददलानी ने इसकी रचना की है, संगीत है विशाल और शेखर का।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मीका सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य, नक्श और प्रीतम की आवाजों में एजेंट विनोद फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एनीबडी कैन डांस। इस फिल्म का गीत आवाजें हैं मोहित चौहान, प्रिया पंचाल और तन्वी शाह की। मयूरपुरी ने बोल लिखे हैं, सागर जिगर का संगीत।

हम आपको याद दिला दें साथियों कि आज अभिनेता भारत भूषण का जन्मदिन है, तो आज के फनकार कार्यक्रम हमारा जो आज सुबह 9:30 बजे प्रसारित होगा वो केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। सुनते रहिए विविध भारती और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में उन्हीं का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम बैंग बैंग।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं ऋषिल वर्गीज की आवाज में जुबान फिल्म का गीत। वरुण ग्रोवर और आशु पाठक ने इस गीत को लिखा है, आशु पाठक का संगीत।

pregunta?

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए सुनिए दीप मनी और नेहा भसीन की आवाजों में रेस 3 फिल्म का एक गीत। कुमार ने इस गीत की रचना की है, संगीत मीत ब्रोज का।

आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी सहायता किसी के लिए जीवन बन सकती है। साथियों, रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। आज जरूरत है कि हम डर और भ्रम से ऊपर उठकर नियमित रूप से रक्तदान करें। आपका एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। आइए इस दिन संकल्प लें, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें ब्लड ग्रुप ABO की इन्होंने खोज की थी। इसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2004 में स्थापित किया और मनाया गया था। आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं, फिल्म भूल भुलैया 3 से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजें। गीत और संगीत आदित्य रिखारी का।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

0: थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने

उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

0: पद्मभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्नाडे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: छाया गीत विविध भारती से
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते,

0: स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस, टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
1: सोया था नस नस में, अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
0: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
3: मैं जिंदगी

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज़्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा

0: अभी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने। मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़े गए थे तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है। ये मेरी खुशनसीबी थी लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था।
0: आरडी
1: बर्मन साहब का। और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट।
1: तो उन गानों पर उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में। लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
0: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो उन लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी। एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके इन्हों गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

जो एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था, और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पर, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीनों सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे यू नो डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही
0: इस तरह के क्या, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के, जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, मैं माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस बाय ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया, बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको,
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है, आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई कर

0: करता हूँ, मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है जो सोच है उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उस ज़माने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था। तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूज़िक, और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूज़िक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूज़िक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज़ ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो हैं अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूज़िक को सुन के 10 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप वो ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीज़ों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस, जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ। ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है
0: दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज़्यादा नहीं नाचता तो तुम ज़बरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियाँ भी दिखानी है क्योंकि कहानियों के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे। बाहों में

0: एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज़, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे, सक सक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी, और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो

0: अभी इस दुनिया में नहीं रही सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए. एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स. तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं. कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं. कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है. आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है. तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है.
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है. बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी. ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा. अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया. तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं.
0: करेक्ट. बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है. हाँ. जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है. बहरहाल मतलब अभी जो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
1: अजनबी.
0: हाँ अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में. आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है.

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता.
1: करेक्ट.
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं. लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं? मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है. आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं. अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं. उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी
0: दिखती है.
1: दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है.
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है.
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं. ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन. तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज कि एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब. आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब. वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं. तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही.
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है. क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया. एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू. And that's the one thing that I really admire about them.

0: दूसरे रितिक शाहिद ऑल वेरी गुड डांसर्स. रणवीर ऑल्सो इज वेरी गुड डांसर और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो इट्स नाइस टू सी द यंग डांसर्स. इट्स जस्ट दैट 19-20 का फर्क है लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वाज नॉट अ ग्रेट डांसर लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्टकमिंग से. इवन विद रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो. और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जांपल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा मेहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ बट शी वाज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन्ड. साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन्ड. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी. वेयर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस.

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुझाव किया जाए।
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: है अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है कि राज खोसला की एक फिल्म थी सन 1966 में आई मेरा साया।

किस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया। राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था क्या। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के अभिनय वाली इस फिल्म के निर्देशक भी राज खोसला ही थे।

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब यह है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ

राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ

डायरेक्टर के रूप में इसी फिल्म से शुरू की थी। हालांकि गुरुदत्त की भी ये पहली निर्देशित फिल्म थी और इसकी कहानी बलराज साहनी की थी। बाजी हिट रही और इसने गुरुदत्त और देवानंद दोनों को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद 1952 में आई जाल, एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। राज खोसला अब गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन वो फिल्म की कहानी और फिल्म के तकनीकी पक्षों में भी मदद किया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जाल फिल्म के एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तय हो गया ये गाना राज खोसला गाएंगे, संगीतकार सचिन देव बर्मन के निर्देशन में। राज खोसला ने ये गाना गाया भी, पर गुरुदत्त को राज खोसला की गायकी और उनकी अदायगी पसंद नहीं आई। इसके बाद ये गाना हेमंत

सन 1954 में आई आर पार एक रोमांटिक क्राइम ड्रामा फिल्म थी। गुरुदत्त और श्यामा की मुख्य भूमिकाएं और असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी राज खोसला ही थे। राज खोसला ने अब तक गुरुदत्त से निर्देशन की तमाम बारीकियां सीख ली थीं और अब वो स्वतंत्र निर्देशन शुरू करने का ख्वाब दिख रहे थे। अगले बरस यानी सन 1955 में उनका ये सपना पूरा हुआ जब आई फिल्म मिलाप। कलाकार थे देव आनंद और गीता बाली। फिल्म उतनी नहीं चली लेकिन एक निर्देशक के रूप में राज खोसला की एक पहचान तो बन गई। गुरुदत्त ने जब देव आनंद और वहीदा रहमान के साथ सीआईडी बनाई तो देव आनंद के कहने पर इसके डायरेक्शन का दायित्व राज खोसला को सौंपा। देव आनंद का ये भरोसा रंग लाया, सीआईडी हिट हो गई, गाने खूब चले और बतौर निर्देशक राज खोसला का सिक्का जम

0: जादूगर।
1: अगर आपको इस फिल्म की शुरुआत याद हो तो एक महिला नजर आती है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, वो एक टेलीफोन डायल करती है और कहती है,
2: हेलो मैं हूँ, उसे किसी तरह रास्ते से हटा दो, हो सके तो रुपए से या समझे।
1: और फिल्म शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही सस्पेंस कायम हो जाता है। सीआईडी इतनी जबरदस्त रही कि लोग अपनी सीटों से जमे रहे ये जानने के लिए कि इसका क्लाइमेक्स क्या है। इस फिल्म ने हंगामा मचा दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने राजखोसला के सामने अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजखोसला अपना मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि देखिए गुरुदत्त जी, मैं एक छोटा पौधा हूं, आप जैसे बरगद के नीचे फल फूल नहीं पाऊंगा, इसलिए अब मैं आपके साथ फिल्में नहीं करूंगा।

यहां से राज खोसला की अपनी धारा शुरू होती है। कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त की निगहबानी में सिनेमा की तालीम लेने वाले राज खोसला का सिनेमा उनसे एकदम अलग है। गुरुदत्त की फिल्मों में जहां बहुत इंटेंसिटी होती थी, मुख्य किरदार की तकलीफ, उसका संघर्ष, उसकी जिंदगी का अंधेरा, उसकी कश्मकश, पर राज खोसला का सिनेमा इस सबसे अलग था। वो शुद्ध मनोरंजन के साए में ढला सिनेमा था। गुरुदत्त की बजाय राज खोसला ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के साथ काम करना ज्यादा सही समझा। सन 1958, राज खोसला ने बनाई काला पानी।

0: दिल जला।
1: इस फिल्म की कहानी राज खोसला के सहायक बप्पी सोनी ने लिखी थी, जो आगे चलकर बड़े निर्देशक बने। राज खोसला ने नाटकीयता और रोमांच को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी फिल्मों में कई नाटकीय मोड़ होते थे, वो आपको चौंकाती थीं और किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाती थीं जिसकी अमूमन दर्शक कल्पना नहीं करते। काला पानी असल में देव आनंद के साथ राज खोसला की एक के बाद एक आने वाली फिल्मों की अगली कड़ी बनी। हम यहां दोहरा दें कि राज खोसला की पहली दो फिल्मों मिलाप और CID दोनों के हीरो देव ही थे।

0: काला पानी के बाद सन 1958 में आई सोलवां साल। ये नवकेतन की फिल्म नहीं थी बल्कि इसके निर्माता थे चंद्रकांत देसाई। इस फिल्म में भी देवानंद और वहीदा रहमान थे। राज खोसला को सस्पेंस बिल्ड करने में मजा आता था, यही उनकी फिल्मों की खासियत रही है। सोलवां साल में भी आप यही सोचते रहते हैं कि अब की बार वहीदा रहमान इस मुसीबत से पार हो पाती हैं या नहीं, आगे क्या होगा। बहुत ही नाटकीय, शानदार, दिलचस्प फिल्म थी सोलवां साल। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। इस गाने में माउथ ऑर्गन उनके बेटे पंचम ने बजाया था, जो आज आरडी बर्मन कहलाते हैं। गाने मजरूह सुल्तानपुरी के थे।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

1960 में एक बड़ी घटना हुई। राज खोसला ने निर्माता बनने का फैसला किया। इसमें उनका साथ निभाया उनके दो दोस्तों ने। एक थे सिनेमेटोग्राफर जाल मिस्त्री और दूसरे थे उनके अभिन्न मित्र देव आनंद। जाल मिस्त्री ने राज खोसला के साथ मिलकर बनाई बंबई का बाबू। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब राज ने बतौर सहायक निर्देशक काम शुरू किया तो भी उनके साथ देव आनंद थे। जब उन्होंने

बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई मिलाप, तो उसमें भी देवानंद थे। जब उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया तो उसमें भी देवानंद थे। इस फिल्म में देव की हीरोइन थी सुचित्रा सेन। हालांकि कहते हैं कि पहले इस फिल्म के लिए मधुबाला का चुनाव किया गया था। बहरहाल सुचित्रा सेन ने कम ही हिंदी फिल्मों में काम किया है और ये फिल्म उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए याद की जाती है। यहां कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। फिल्म बंबई का बाबू ओ हेनरी की कहानी अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित थी और इसे लिखा था जाने माने लेखक और निर्देशक राजेंद्र सिंह बेदी ने।

वो दिन थे जब जाने माने निर्माता शशधर मुखर्जी ने अपने बेटे जॉय मुखर्जी को अभिनय की दुनिया में उतारने का फैसला किया था और बनाई थी फिल्म लव इन शिमला, जो सन 1960 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के जरिए एक नई अभिनेत्री साधना ने फिल्म संसार में अपना पहला कदम रखा था। शशधर मुखर्जी ने साधना के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस सिलसिले की दूसरी फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने याद किया राज खोसला को, और इस तरह आई एक मुसाफिर एक हसीना साल 1962।

एक मुसाफिर एक हसीना का भी परिदृश्य वही था जो राज खोसला की फिल्मों का आधार होता है, सस्पेंस, रोमांच, जासूसी, नाटकीयता। इस फिल्म ने धूम मचा दी थी।

साधना के रूप में राज खोसला को वो हीरोइन मिली जिसकी शायद उन्हें तलाश थी। राज खोसला हमेशा नई रोमांचक कहानियों की तलाश में रहते थे। बस इत्तेफाक से इत्तेफाक के सिरे जुड़ते चले गए और साधना के साथ राज खोसला ने एक फिल्म त्रयी बनाई, एक ट्रायोलॉजी। इसकी खासियत यह है कि इन तीनों फिल्मों की नायिका के साथ जुड़ा है रहस्य का कोहरा। सन 1964, वो कौन थी?

सन 1966 मेरा साया सन 1967 अनीता।

वो कांथी में साधना ने डबल रोल निभाया था, सफेद साड़ी में रहस्यमय साधना और उनका सस्पेंस। पूरी फिल्म आपको बांध कर रखती है, आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस फिल्म के हीरो थे मनोज कुमार, संगीत मदन मोहन।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था। बाद में इसे लता जी की आवाज में डब कर लिया गया था।

0: इस फिल्म के एक और गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी संगीतकार मदन मोहन के बेटे समीर कोहली की जुबानी।
1: अब आपने बात की लज्जा गले की, अभी लज्जा गले एक अचम्मा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज, मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं।
0: बिल्कुल,
1: पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहरी अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई जिसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राज खोसला साहब की, राज खोसला साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें,
0: आंखें देवेंद्र गोयल,
1: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए
0: जी।
1: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है, और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूं आपकी सिचुएशन।

0: राज खोसल साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें।
1: आंखें देवेंद्र गोरे।
0: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए
1: जी।
0: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूँ आपकी सिचुएशन।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे ही लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, क्या मुखड़ा क्या है, जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब और मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
0: राज खोसला की ये वो फिल्में हैं जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि इस गाने को उस जमाने में जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। वो उन दिनों मास्टर सोहन लाल की असिस्टेंट हुआ करती थी। मीरा साया के सभी गाने लाजवाब थे।

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारे।

इस बीच सन 1966 में राजकोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवां जैसी हिट फिल्में की थीं, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थीं। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राज खोसला ने किया।

कितना अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की 3 फिल्में आईं। पहली थी दो बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे दो बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूँ।

इस फिल्म के लिए सिमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1969 में राजखोसला लेकर आए फिल्म चिराग। इस फिल्म में आशा पारेख के साथ हीरो थे सुनील।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
5: कहानी नाटकीय फिल्मों पर जो पकड़ राज खोसला की थी, वो उन्हें एक विलक्षण निर्देशक

इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। इस फिल्म को 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। राज खोसला को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार।

0: बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी साहिल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए वो गाना।

राजेश खन्ना और मुमताज की अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी, तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर स्थापित

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे, बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बाना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक मुकम्मल पहचान मिली।

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना।

इस दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

80 का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई सनी।

राज खोसला के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी सन 1989 में आई नकाब। कलाकार थे ऋषि कपूर और फरहा। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया। इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आर डी परमन।

नब्बे का दशक आते आते राज खोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राज खोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राजखोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं, ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे राजखोसला पर यह विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम

0: में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलक एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: कुमार जलालाबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपको गीत सुनवाते हैं, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओं, आपने मदन मोहन का सर्वाधिकिया गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन जवान।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
5: यह इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोता, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हमसफर कौन है बता। एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा, वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो, तेरा हुस्न रहे आबाद,

0: एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ। होता है दो चेहरा हर चेहरे पे, तेरा हमसफर तेरा दिल ही है। ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो। दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

0: सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। इंदिवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त, एक मार्गदर्शक और सच्चे हमसफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो अद्भुत है। चले जाना जरा ठहरो, आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर कोई अनजाना है वहां आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी, तो मैं उत्सुक हूं कि सुरीला सफर में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा। और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठ ना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां, अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना
1: शवानी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीर आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाजिर है कि वजीर आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
2: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
1: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकाती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल हैं। हुकूमत ने एक हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में हतमी रिपोर्ट तलब की है। SIT की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद NTA इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज पर मबनी इम्तिहानात के हमवार, महफूज और मियारी इनकाद को यकीनी करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सब

0: कर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
1: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाजिर है कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए अगर जरूरत हो तो इम्तिहान की खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को जरूरी अहकाम दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक रियासत के मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम आज से रियासत के मशरकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: हटने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहीं आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है। हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है। और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं और इसी का असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थक कर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नज़रों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नज़रों से नसीब मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं।

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोताओं। वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप खरीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, वो एक ख़ास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी खरीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं, आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफ़र कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है, दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है, जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हमसफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हमसफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफर की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है, आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप

भी आईने के सामने आता है, आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।

अपना देश फिल्म का ये गीत था मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और यह है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफर गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, जरा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं। आईना चेहरा जुल्फ हम सफर और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्ममंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों यादों इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोता, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहरी आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना, मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ छुपाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिसे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब खरीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर लिखें और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है 1727 में, जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना। जीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नजर आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नजर आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लग रहा है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है। कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे, जी हाँ, बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय लगाती हैं।

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोता नमस्कार, आज की त्रिवेणी सांझ विषय पर आधारित है। दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।

दोस्तों, दिन भर की आपाधापी, संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बछड़ों के पास आना रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है। जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है, ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।

दोस्तों, सांझ हमें सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग

मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे।
आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से

0: योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने

0: 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: कहा अब तुम हो जवां मेरी जान धड़क पन्ने छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।
1: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

बजकर 1:30 हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को, संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया। आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्या नगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को पसंद किया बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक पैंक मुड़त और चेतन नहाटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन।

0: इस गीत के पहले श्रोताओ आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
5: उसका तर्क अनुचित है क्या?
4: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
5: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
4: कोई लाभ नहीं होगा।
5: क्यों?
4: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
5: वो क्या कहते हैं?
4: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
5: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
4: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
5: क्या?
4: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
5: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है।
4: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों चुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेद वाक्य मानता है?
5: फिर वही तुलना।
4: तुलना के हिसाब से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम।
5: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
4: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
5: महाराज।
4: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
5: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
4: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
5: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
4: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
5: ईश्वर कल्याण करें।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

महाराज दुर्मुख दुर्जय दुष्कर्ण शत्रुंजय बिंद

महारानी गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना। सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष के भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर धोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूध बन

0: लेकर आपकी राजसभा में नहीं आया था, किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
1: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
0: देवी गांधारी,
1: कृष्ण, मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
0: मुझे क्षमा करो माता।
1: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
0: माता, जो अवश्यम भावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
1: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ, मुझे किसी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: समझ गया, ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही।

0: कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद? उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म पातिव्रत्य न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना।
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आप।
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति जली। कुंती का विवाह भी एक पंकु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी, कुंती के 5 ही बेटे विश्व विजयी

0: वे ओ प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय है, इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: कंधारी, देखो मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु किंतु जिस हट धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूं मैं आपसे प्रेम करती हूं।
0: कंधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए, अब मन कैसा तृप्त है। इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल पड़ रहा है, आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली, आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए। चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ, इसी तरह
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का, समय हमारा बोझ उतार

0: अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी

0: आता था। तो उनको भगवान के प्रति जो था ना, वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं, तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी, उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
1: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
0: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
1: अच्छा।
0: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी। हम गाते थे।
1: अच्छा।
0: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
1: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें?
0: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो

0: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
1: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
0: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
1: जी,
0: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी। हाँ,
1: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी
0: तो
1: भी
0: अपनी
1: दुनिया बन चुकी थी, आपकी भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
0: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया, वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
1: मितुल जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
0: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
1: जी जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप?
0: हाँ,
1: जी ने
0: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं।
1: हाँ,
0: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है,
1: खूबसूरती
0: के
1: साथ।
0: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो,
1: क्या बात है।
0: हाँ,
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ तुम
1: थे।
0: हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
1: क्या
0: क्या मेरा प्यार पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
1: बहुत स्वीट,
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत,
0: हर पल के। तो ये रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे

0: और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे, दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून, हाँ काले नहीं, सफेद
0: सफेद,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना देख माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ

0: घर को मनाया बहुत रुचि के साथ। तो बताइए ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं। रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा,
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्रॉइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी।
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
0: लक्ष्मी के, नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
0: जी,
1: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए, सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा, हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है आपके, क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
0: अच्छा,
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
0: जी,
1: गई
0: जी।
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा।

0: तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया
0: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
1: सुख

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
5: अच्छा।
4: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
5: ड्राइंग
4: करते।
5: तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो। तो
4: बहुत बहुमूल्य चीज है, मेरे पास आज खजाना है।
5: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
4: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि

0: ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा है, अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं,
1: ऑयल पेंटिंग
0: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर, तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है। आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहां बंध जाते हैं जी, लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
0: तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
0: आपको, आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
0: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहां पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, नहीं। अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है,
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम है, हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहां पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की
1: बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवस पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं।

0: वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल
0: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं, उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: मॉडर्न
1: कैरिकेचर
0: आर्ट
1: है,
0: है,
1: इस तरह का सभी तरह के आप।
0: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपने पेंटिंग बनाइए।
1: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं।
1: बहुत सुंदर।

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है,
0: हाँ हाँ,
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं। जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं
1: और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।

0: कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही हैं?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है,
0: अच्छा
1: है ना, जैसे ब्राउनी है, हाँ, ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम है,
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन, जैसे चुन चुन भी है, सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, so, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है कि अब बहुत हो गया।
0: जी, कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर सुनवाइए।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल जी, वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
0: जी। बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से, और आज की ये बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की, उजाले

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

ये आकाशवाणी है, विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM सुन रहे हैं आप। प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर।

0: सभी सुनने वालों को शिप रजेंद्रा का नमस्कार। दिन गुजर चला, सजी संवरी संध्या सिंदूरी चुनर ओढ़कर स्वागत कर रही है आपका। तो कैसा बीता आपका आज का दिन? आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व रक्तदान दिवस। एक ऐसा दिन जो हमारे उन सभी साथियों को, हमारे साइलेंट हीरोज को समर्पित है, जो बिना किसी बदले की उम्मीद के किसी अनजान की जान बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। तो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, चलो अपना फर्ज निभाए। रक्तदान है महादान, इससे बचती है इंसान की जान। इसी संदेश के साथ करती है प्रोग्राम हेलो कानपुर की शुरुआत इस कॉल के साथ। हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैडम, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ।
0: नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रभात शुक्ला है।
0: तो प्रभात जी, आप ये बताइए कि 14 तारीख को हम विश्व रक्तदान दिवस मना रहे हैं, तो रक्तदान को कहा जाता है रक्तदान महादान, तो रक्तदान के लिए कितने जागरूक हैं आप?
1: मैडम, रक्तदान महादान होता है और इसके लिए मैं बहुत जागरूक हूँ। मैंने अब तक 10 बार रक्तदान किया है। इवन जो लास्ट बार भी रक्तदान किया है वो दिसंबर 2025 में ही किया है।
0: जी बहुत अच्छा।
1: और रक्तदान इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि रक्तदान का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं होता।
0: जी,
1: आप इसको बाहर से कहीं पे पैदा करके रक्तदान नहीं कर सकते। हमेशा आदमी की ह्यूमन बॉडी से ही रह सकता है और इसे इंसानों से ही प्राप्त किया जा सकता है। और एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। दुर्घटना, गंभीर सर्जरी, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए प्रतिदिन रक्त की जरूरत पड़ती है। तो बहुत बार कैसा होता है कि किसी पेशेंट के पास कोई तीमारदार है जो रक्त देने के लिए है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि एमरजेंसी में किसी के पास कोई तीमारदार ही नहीं है।
0: जी,
1: तो हमें क्या होता है, अगर हम रक्तदान करते हैं तो आपके रक्त का कुछ पार्ट नहीं जाता है, वो आपका 3 महीने में वो पूरा रक्त कंप्लीट हो जाता है। 3 महीने बाद आप फिर से रक्तदान कर सकते हैं। सो आपको, आपकी वजह से एक को जीवन दान मिल गया, तभी इसी वजह से रक्तदान को महादान कहा जाता है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि हमें रक्तदान करना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए ताकि दूसरे लोग रक्तदान कर सकें। बहुत बार क्या होता है, हेजिटेशन होता है कि हम रक्तदान नहीं करेंगे, इससे कमजोरी आ जाती है, या रक्तदान क्यों करें हम, हमारा खून है। खून किसी का भी हो, किसी के जीवन दान से बड़ा किसी का कोई खून नहीं होता है। सो मेरे हिसाब से तो रक्तदान करना चाहिए मैडम।
0: बहुत अच्छी बात बताई प्रभात जी आपने, और इसीलिए कहा गया है रक्तदान महादान। और प्रभात जी, अब हम बातों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रोग्राम में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैडम, तेरी मिट्टी का ए मेरी जमी,
0: केसरी फिल्म का
1: आप ये गाना चला दी।
0: किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे प्रभात जी आप ये गीत?
1: पूरे भारतवर्ष को मैडम, इससे बड़ा क्या है।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाएं।

0: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हेलो कानपुर
3: जी, नमस्ते मैम।
2: नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: 139 हो सेक्टर है, NPO व्यवस्था काम, अजीत यादव बोल रहा है।
2: तो अजीत जी, कैसे हैं आप बताइए?
3: जी बहुत बढ़िया जी मैम।
2: क्या करते हैं आप?
3: ये हम पनकी में प्राइवेट सेक्टर है, उसी में काम करते हैं जी मैम।
2: अच्छा, तो पनकी तो पर्यटन स्थल है।
3: जी जी।
2: तो हनुमान जी के पनकी मंदिर के अलावा पनकी में और क्या क्या चीजें, कौन कौन से प्लेस फेमस हैं, जानते हैं आप अजीत जी?
3: जी जी, एक तो कछुआ तालाब बहुत ही पुराना फेमस है।
2: बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बताया आपने।
3: ये दो चीजें ज्यादा फेमस हैं।
2: अच्छा अजीत जी, आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि रक्तदान के विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे।
3: अब ये है, ये तो स्वेच्छा के अनुसार है, जो रक्तदान करना चाहे तो इससे नेक काम, भला काम कोई दूसरा है नहीं
2: जी।
3: अब ये तो सेल्फ डिपेंडेंट, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ये तो जागरूकता के ऊपर भी होता है। आदमी सोचता है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो उसको कमजोरी आ जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है जी मैम।
2: जी, तो रक्तदान महादान।
3: जी जी, बहुत बढ़िया दान होता है ये तो। इससे बढ़कर किसी को जीवन दान मिल जाए तो इससे बड़ा कोई दान नहीं होता मेरे ख्याल से।
2: तो अजीत जी बताइए, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप?
3: हमें तुमसे अच्छा कौन है, इसका टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए। और ये गाना डेडिकेट रहेगा सबसे पहले शिप्रा चंदा आपको।
2: जी धन्यवाद।
3: और फरहान सर हैं, सौरभ सर हैं, और मीनाक्षी मैम है, और जितने भी एंकर जो पेश करते हैं सबके लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
2: बहुत ही अच्छा लगा हमें आपने ये गीत डेडिकेट किया, जितने भी हमारे आकाशवाणी कानपुर के एंकर्स हैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, पहुंच रहा है ये गीत आप तक, धन्यवाद।
3: ठीक, नमस्ते।
2: नमस्कार।

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: आध है अपने दिल में वो आध उधर भी होगी, जो आध है अपने दिल में वो आध उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है।
1: हेलो कानपुर।
2: हेलो कानपुर,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैम शिप्रा जी बोल रही हैं।
1: जी बिल्कुल, शिप्रा बात कर रही हूँ, आप बताइए अपना नाम।
2: मैम रामलीला मखान सचेंद्री से बाबा शिवानंद त्रिपाठी।
1: कैसे हैं बाबा शिवानंद त्रिपाठी, आप बताइए क्या हाल चाल आपके?
2: चुस्त दुरुस्त हैं मैम।
1: अच्छा चुस्त दुरुस्त हैं। गर्मी कैसी पड़ रही है?
2: गर्मी तो कुदरत की देन है, इसमें हमें उसके लिए बचाव करके चलना
1: जी,
2: और
1: जी।
2: अपनी सुरक्षा रखना ये हमारा कर्तव्य है।
1: बिल्कुल, अपनी सुरक्षा रखना तो कुछ आप भी देखिए, अगर सोशल मीडिया वगैरह पे देखें तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं कि गर्मी से बचने के अजब गजब तरीके भी लोग अपनाते हैं, तो देख करके थोड़ा सा आनंद आता है कि इस तरह भी गर्मी से बचाव हो सकता है। तो क्या ध्यान रखते हैं आप बाबा शिवानंद त्रिपाठी जी, जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो किस तरह से बचाव कर रखते हैं अपना?
2: मैम बचाव तो ये है कि अपने सर पर तौलिया रुमाल या अंगोछा रख करके, और सबसे सुगम उपाय ये है कि कॉटन के कपड़े पहने
1: जी,
2: और पानी में शुद्धता हो तो पानी साथ लेकर के चलें, और पानी 10 मिनट में एक गिलास न चाहते हुए भी पीते रहें। थोड़ा सा बैठ करके किसी पेड़ की छाया में या कहीं छाव में आराम कर लें, फिर अपने गंतव्य स्थान को चल दें।
1: बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने बाबा शिवानंद जी, और आपने कहा कि पेड़ की छांव में आराम कर लें। अच्छा, जब हम ये तो सोच लेते हैं कि हमें पेड़ की छांव में आराम करना है, लेकिन हम पौधारोपण के लिए कितने जागरूक हैं? कहीं ना कहीं पौधारोपण के लिए भी उतनी ही जागरूकता जरूरी है जितना कि हम पेड़ों से आश्रय लेते हैं या फल फूल लेते हैं या ऑक्सीजन मिलती है हमको, तो पेड़ तो हमें देते ही देते हैं, तो पौधारोपण के लिए लेकिन उतनी जागरूकता की कहीं आपको क्या लगता है, कमी है कि सही है?
2: मैम जागरूकता की कमी ये है कि सबसे ज्यादा अपने भरण पोषण के लिए आदमियों हर शख्स ने जो है पेड़ों और पौधों का हनन किया है
1: जी।
2: और रही बात ये कि आज ईश्वर साक्षी है और हमारा दिल साक्षी है, हम 2 बाल्टी 4 बाल्टी जब तक एक बरगद के पेड़ में पानी नहीं डाल देते हैं तब तक अपने मुंह में जल नहीं ग्रहण करते।
1: बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात।
2: और रही बात ये कि अपने हाथों से एक बरगद के पेड़ की सेवा की है, 11 साल के बाद उसका यज्ञ उपवीत किया है, प्रमाणित है, और हजारों और सैकड़ों लोग उस बरगद को पीते हैं।
1: बहुत ही अच्छा, तो ये देख करके तो आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होता होगा कि जिस बरगद को आपने पाला पोसा 11 वर्ष हो गए और आज लोग उसकी छांव में आश्रय लेते हैं, पंछी अपना वहां पे बसेरा बनाते हैं और लोग अपनी पूजा पाठ और सारी चीजों के लिए वहां पे पहुंचते हैं।
2: और मैम विधायक जी से उसके लिए रिक्वेस्ट करके उस बरगद को इंटरलॉकिंग चबूतरा भी करवा दिया है।
1: बहुत बढ़िया बाबा शिवानंद त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब बताइए गीत कौन सा सुनेंगे आप?
2: जी आपकी एक छत्र छाया में आपके रहनो करम से पिक्चर है, दिल आखिर दिल है।
1: दिल आखिर दिल है,
2: निशा फाजिली जी ने मतलब गीत सरबद्ध किया है
1: जी।
2: और संगीत किया है, संगीतकार है कयाम जी,
1: जी
2: गाया है मोहम्मद रफी ने। है तुम्हें ऐसा लगता है मेरे दिल की ताबीर हो तुम जी, हमारे हर दिल अजीज हैं विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी
1: जी,
2: और हमारे ही गांव के हैं गोविंद तोमर, गोविंदा साहू, और सारी विविध भारती टीम, और हमारे परिवार में हमारी वाइफ और हमारे बच्चे।
1: बहुत अच्छी बात बाबा शिवानंद त्रिपाठी जी, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत फिल्म दिल आखिर दिल है से।
2: जी मैम, थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच।
2: ओके मैम।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर मैडम, इरशाद राय अयोध्या नगर अकबरपुर से मैडम।
0: इरशाद जी कैसे हैं आप?
1: बाया है मैडम,
0: क्या करते हैं बताइए।
1: फलों की दुकान है, माथी रोड वृंदावन गार्डन, उसी दुकान पे है मैडम।
0: तो इन दिनों कौन कौन से फल की बिक्री हो रही है?
1: इस समय दशहरी आम है, तोतापरी है, बादाम है, लीची है। शक्कर मैडम रोड के किनारे दुकान है, उसी दुकान से कर रहे हैं, तो हॉर्न बज रहे हैं गाड़ी का। माथी के आगे जिला अस्पताल बना, तो आना जाना गाड़ी का लगा रहता है।
0: अच्छा, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, बहुत अच्छी। तो आपकी दुकान पे ग्राहकों की भीड़ रहती है और गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे में आप रेडियो किस तरह सुन पाते हैं इरशाद जी?
1: रेडियो दुकान बजता रहता है मैडम,
0: बजता रहता है। कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं बताइए
1: ये रात के जो 9 बजे आता है फरमाइशी वाला।
0: जी।
1: हेलो कानपुर है, आपकी फरमाइश है, ये सभी कार्यक्रम सुनते हैं, रेडियो बजता रहता है।
0: रेडियो बजता रहता है और आपका काम चलता रहता है,
1: जी, इसी बहाने काम भी हो जाता है, गाने भी सुनते रहते हैं।
0: तो आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: पहले मैं पत्थर के सनम, महबूब मेरे तू है जो बढ़ जाती है कीमत मौसम को।
0: पत्थर के सनम।
1: जी,
0: अच्छा, नाम लेना चाहेंगे?

0: हमारे चाचा अमीर बाबू है, तिवारी लाल, नरेश दत्ता और आपको और आपकी पूरी टीम को।
1: ठीक है इरशाद जी, पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये गीत आप तक। धन्यवाद।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, नमस्कार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री मोहम्मद अहमद रायनी बोल रहे हैं।
0: मोहम्मद अहमद रायनी जी, कैसे हैं आप, बताइए।
1: बहुत बढ़िया, आपकी दुआ है, आपकी दुआ से बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: हम तो कबाड़ की फेरी करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो समय कैसे कट जाता है आपका? कार्य करते करते किस तरह रेडियो सुन पाते हैं आप?
1: रेडियो हमारा बसता रहता है, मोबाइल फिट है, उसी से अपना काम चलाते रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हाँ, सफर भी कटता रहता आराम से।
0: अच्छा,
1: जहाँ
0: अच्छा।
1: छाया मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ छाया नहीं मिलती वहाँ चलते रहते हैं।
0: गर्मी के मौसम में सबको पेड़ों की छाया की बड़ी जरूरत है।
1: बेशक, अगर पौधा रोपण होता रहे ना तो इतने पेड़ की कमी ना हो।
0: हाँ, तो इसके लिए जागरूकता सभी को जरूरी है मोहम्मद अहमद रायनी जी, है ना? तो आप भी पौधारोपण कीजिए, ऐसी उम्मीद की कर रहे हैं
1: आप
0: आपसे।
1: करेंगे, अब आपने कहा है तो हम करेंगे, अपने घर में लगाएंगे।
0: जी बिल्कुल, पौधा रोपिए और एक पेड़ माँ के नाम। अगर हम पौधे पौधा जो रोप रहे हैं उससे कुछ हमारा इमोशनल कनेक्शन हो जाए, तो फिर उसकी जो हम सेवा करते हैं ना, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
1: बहुत बढ़िया ख्यालात हैं आपके, तो आप
0: जी
1: ही की बात कहने, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही है, और
0: जी
1: ऐसा होना भी चाहिए कि
0: जी
1: जैसे हम अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, ऐसी पौधों को मतलब पाले पोसे
0: जी
1: जिनसे हमें कुछ मिलना है आगे चल के। जैसे हमारे माँ बाप हमको सब कुछ देते हैं, वैसे पौधा भी हमको सब कुछ देगा, फल भी देगा, छाया भी देगा, पत्ती भी देगा, फूल भी देगा, एनीवे सब कुछ देगा।
0: बहुत अच्छा लगा मोहम्मद अहमद रायनी जी आपसे बात करके। बताइए, गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।
0: जी
1: आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गाने के बोले कुछ कहता है ये सावन।
0: तो जेठ के महीने में सावन को बुला रहे हैं आप, हैं?
1: हाँ, बुला रहे हैं तो रात में आ गए थे सावन।
0: रात में सावन आ गए थे। अच्छा, पानी जब बरसता है तो उसको सावन का ही नाम दे दिया जाता है। और नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ, मेरी पत्नी शकीला बेगम रायनी,
0: जी
1: आपको, आपके पूरे परिवार को,
0: जी धन्यवाद।
1: और विविध भारती के पूरे परिवार को ये

0: कुछ कहता है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: हेलो कानपुर।
3: जी हेलो कानपुर मैम, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
3: मैं मुजम्मिल अहमद बोल रहा हूँ, कुर्सा जिला उन्नाव से।
2: कैसे हैं मुजम्मिल जी आप?
3: जी हम बहुत अच्छे हैं, और आपकी दुआएं हैं। और आप और अच्छे कैसे नहीं होंगे, आप इतने अच्छे प्रोग्राम लेकर आती हैं, टाइम टू टाइम हर एक चीज का तो ख्याल रखती हैं आप लोग।
2: क्या बात है,
3: हर एक चीज इम्पोर्टेंट पॉइंट देते हैं टाइम टू टाइम। कहीं हेल्थ के लिए प्रोग्राम आ रहा है, कहीं एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम आ रहा है, हर चीज तुमको अवेलेबल मिलती है।
2: प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं मुजम्मिल जी हैं?
3: हाँ बिल्कुल, आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। आप लोग का अंदाज स्टाइल तो लाजवाब है, ये आवाजें पेशकर
2: क्या बात है। तारीफ पे तारीफ के सिलसिले तो चलते रहेंगे यूं ही इसी तरह। अब आपसे एक सवाल, आप ये बताइए कि गर्मी के इन दिनों में आप अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करते हैं, बताइए।
3: ये करते हैं कि ज्यादा धूप में नहीं निकलते हैं, जब कोई जरूरी अर्जेंटली काम होता है तभी निकलते हैं बाहर। और कुछ ये पेय पदार्थ ज्यादा लेते हैं
2: जी।
3: आजकल तो बाजारों में वाटरमेलन चल रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, वो पानी की कमी पूरी करता है। और शिकंजी है और तमाम चीजें हैं, ये सब करना चाहिए। बाहर अगर निकलिए तो अम्ब्रेला वगैरह यूज कर लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह से अपने आपको बचाना है।
2: हाँ, तो गर्मी को हराने के ये जो कूल आइडियाज हैं आप ये दे रहे हैं, इसमें आप ये भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में कितने जागरूक हैं ये भी आप बता दीजिए।
3: पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमारे घर में एक गुलाब की टाइप पेड़ लगा है, पपीते का पेड़ लगा है, उसको कंटिन्यू पानी भी देते हैं। इस चीज को लगा के छोड़ देना तो ये तो एकदम बेवकूफी है, जो है सक्सेस हो रही ना
2: जी,
3: तो वो देख के तो हमेशा अच्छा ही लगता है।
2: बहुत अच्छी बात बताई मुजम्मिल जी आपने, कुछ और कहना चाहेंगे आप?
3: आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं दीपशिखा मैम को, मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के लिए कि दोबारा से हमने प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम का हमने बहुत इंतजार किया।
2: अच्छा,
3: दीपशिखा मैम से हम मैसेज ये कहना चाहते हैं कि वो भी प्रोग्राम करने के लिए आए, वो सिर्फ वो जो हेल्थ का प्रोग्राम आता है उसी को करने आती है, हमको वो बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं वो हर प्रोग्राम में आए।
2: बहुत अच्छा मैसेज है आपका, वो भी आपका प्रोग्राम के साथ पहुंच रहा है उन तक, ये भी एक अच्छी बात है मुजम्मिल जी। आप गीत बताइए, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
3: मेरा साथी चल, मेरे हाथी चल, मेरे साथी।

0: खींच के
1: चलिया धक्का मार
0: बंदे मोटर कार चल। ये गाना ही सुनाइए आप।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, संदीप कुशवाहा बोल रहे, बहरमपुर।
0: हाँ तो संदीप जी कैसे हैं आप बताइए,
1: बहुत ही अच्छे हैं।
0: क्या करते हैं संदीप जी?
1: हमारी दुकान है तो दुकान पर रहते हैं, पास खाद और बीज की दुकान है जी।
0: तो इन दिनों काम कैसा चल रहा है आपका?
1: इन दिनों काम अच्छा चल रहा है, धान की बीज की बिक्री हो रही है जी।
0: अच्छा, तो खेतों में इस समय धान की बुआई होगी अब है?
1: जी अभी धान के बीज बोया जा रहा है, उसके बाद धान की रोपाई होगी।
0: तो संदीप जी बताइए, कुछ पर्यावरण के लिए आप संदेश देना चाहेंगे?
1: जी संदेश ये देना चाहते हैं कि सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और जब ज्यादा पेड़ होंगे तो वातावरण में भी काफी प्रभाव पड़ेगा, शुद्ध हवा खाने को मिलेगी। तो मैम एक बात ये कहना चाहते हैं कि मैडम, हम भी दुकानदार हैं, मैं
0: जी
1: ज्यादातर ये देखता हूँ कि घर से लोग आ जाते हैं, कोई भी सामान लेना होता है तो बस अपना बैग और थैला लेकर नहीं आते,
0: जी
1: दुकानदार के भरोसे आ जाते हैं कि दुकानदार खुद पन्नी देगा। जबकि हम लोग कहते हैं कि नहीं, अपने घर से अपना थैला साथ में लेकर आइए। अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो ये थोड़ा प्लास्टिक और ये पॉलीथीन का उपयोग कम हो जाएगा।
0: बहुत अच्छी बात बताई संदीप जी आपने, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता है जरूरी। कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं संदीप जी बताइए?
1: मैडम ये 9 से 10 जो आता है, आपकी फरमाइश और हेलो कानपुर, हवा महल, ये सारे प्रोग्राम मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं काफी नियमित और पुराना श्रोता भी हूँ रेडियो
0: जी
1: का।
0: जी जी आप तो नियमित श्रोता हैं हमारे, तो आपकी फरमाइश कार्यक्रम से आप कैसे जुड़ते हैं? ईमेल के साथ जुड़ते हैं या चिट्ठियों के साथ?
1: ईमेल के साथ
0: ईमेल के साथ, क्योंकि ईमेल अब आसान है और बहुत ही त्वरित हम तक पहुंच जाती है, और है ना,
1: जी
0: और फिर कार्यक्रम में आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो एक बहुत ही
1: जी
0: अच्छा साधन है कि ईमेल द्वारा आप
1: और
0: कनेक्ट हो
1: मैडम
0: जाएं
1: जैसे ये
0: प्रोग्राम से।
1: प्रोग्राम पहले मतलब टाइम चेंज किया गया तो और अच्छा है, पहले
0: हाँ
1: 10 से 11 आता था, अब 9 से 10 आता है तो बहुत अच्छा है। उसी टाइम खाना पीना होता है, मैं रेडियो रख लेता हूँ और खाना खाता भी रहता हूँ, रेडियो भी सुनता रहता हूँ, और मोबाइल भी बगल में रखा जाता है, मैं ईमेल भी भेजता रहता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो संदीप जी एक बार आपकी पसंद का जो गीत आप सुनना चाहते हैं उसे गुनगुना के बता दीजिए आप।
1: तेरे चेहरे

0: मैं तुम्हें एक दो नाम दे सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल ले लीजिए।
0: जी मैडम, सनियापुर डेरापुर नितेश त्रिपाठी है, कस्बा अमरौता से अब्दुल जब्बार राय, और लालपुर सूरजपुर से टी एस चंदेल, संदीप राठौर मियांगंज उन्नाव से, और

0: कानपुर।
1: हेलो कानपुर, मैं कल्याणपुर कानपुर से हरीश चंद्र गौतम बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं हरीश जी आप?
1: मैं रेडियो टीवी कूलर पंखे की रिपेयरिंग का काम करता हूँ।
0: रेडियो सेट से आप तक बनने आते हैं?
1: जी हाँ, देखिए आपके पसारों से मेरा नाम अनाउंसमेंट होता है, उन्नाव बिल्लौर तक का कस्टमर आता है, जो चीज कहीं नहीं बनती मेरे पास बनाता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपकी ये एक आय का माध्यम भी कहीं ना कहीं लोग जान जाते हैं कि भाई आप रेडियो बनाते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आप तक पहुँचते हैं। हरिश्चंद्र
1: जी,
0: जी
1: जी एक वर्मा जी थे बेचारे, प्रोग्राम सुना था तो वो उन्नाव से मियाँ बीवी दोनों आए थे ट्रांसफर लेके बनवाने।
0: क्या बात है, तो ऐसे ही जब श्रोतागण आप तक पहुंचते हैं, लिसनर्स पहुंचते हैं, तो आप उनकी एक यादगार तस्वीर भी रखा करिए अपने पास कि कहां कहां से हमारे पास आए थे।
1: उनकी यादगार तस्वीर भी रहती है और साथ में वो लोग हमारा नाम भी लेके प्रसारण करते हैं, डेडिकेट करते हैं, मैं भी डेडिकेट करता हूँ उन लोगों को गाने।
0: तो ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है आप लोग आकाशवाणी कानपुर के साथ हैं। हरीश जी,
1: जी जी जी
0: तो हरीश जी अपने शौक के बारे में बताइए, कुछ खट्टी मीठी बातें भी हो जाए आपसे।
1: मीठी बातें क्या करेंगे, उम्र के हिसाब से अब हम क्या खट्टी मीठी बातें
0: अच्छा ये
1: करेंगे।
0: बताइए, आप उम्र हो जाती है, मान लिया उम्र हो गई, लेकिन क्या एहसास जो होते हैं या जीवन जीने का जो जज्बा होता है वो कहीं से कम हो जाता है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं मेरा तो कम नहीं हुआ, आज भी मैं 30-35-40 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। हर आदमी देखता कहता यार उम्र आपकी बहुत हो गई, लेकिन अभी भी आप पे तो
0: आप देखिए, आप अगर एक नजीर लेना चाहें तो आप अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: है ना?
1: हाँ
0: उम्र होने के साथ अगर आप अपडेट रहते हैं और
1: जी
0: यंगस्टर्स के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो कहीं भी उम्र बढ़ने का जो आप कहते हैं ना, उम्र बढ़ गई हमारी तो अरे अब क्या, ये वाली जो
1: जी
0: फीलिंग है ना वो हो जाती उड़न छू।
1: अब देखिए 74 एज मेरी है,
0: जी
1: ठीक है। अब मैं राजकुमार जी का, अमित जी का, जीतू जी का, इनका मैं पुराना फैन हूँ, इनकी पिक्चरें ज्यादा देखता हूँ।
0: जी
1: महमूद साहब थे अपने, अब मुगले आजम जब लगी थी पहले दिन पहला शो देखा था निशा ठाकिन में, समझ लीजिए आप।
0: बड़े ही खूबसूरत पल हैं हमारी जिंदगी के जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, एकदम तरोताजा। जब बातों ही बातों में वो बातें बाहर आती हैं तो खुद को भी अच्छा लगता है। हरीश जी
1: जी जी जी जी
0: तो ये गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: मैं तो देखिए जून का महीना चल रहा है, गर्मी तो है ही भयंकर
0: जी,
1: तो महमूद अरोरा रानी जी के ऊपर कुएं में गाना फिल्माया गया था, फिल्म का नाम है जवाब
0: जवाब,
1: और हाँ किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में गाना है, गाने के बोल हैं आ जाए मेरी जान, ये है जून का महीना, गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। अच्छा मैं दो चार लोगों के नाम

0: ले लू, प्लीज डेलीगेट कर दू।
1: जी बिल्कुल ले लीजिए।
0: हमारे सिंहपुर के टेलर मास्टर हैं बलवान सिंह जी, और हमारे ग्रीस भाई हैं सविता जी, और हमारे बच्चे हैं प्रमोद कुमार गौतम, अनिल कुमार गौतम, सुनीता गौतम बहू हमारी, और हमारा पूरा गौतम परिवार।

आज के हेलो कानपुर प्रोग्राम का सफर बस यहीं तक। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ तो आपको बता दें कि फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को दिन में 11 से 12 बजे तक। हमारा फोन नंबर है 0512254 1818। एक बार फिर से सुनिए 0512254 1818। और अब दीजिए फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर से शिप्रा चंद्रा को अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राहुल पाल, तकनीकी सहयोग प्रवीण शर्मा और अन्नपूर्णा जायसवाल का।

0: 103.7 FM पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का कानपुर केंद्र। थोड़ी देर में सुनिएगा प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का

0: एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम हेल्थ मंत्र।
3: कार्यक्रम का आज का ये अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण कटियार जी को, जो कि कानपुर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
4: धन्यवाद दीपशिखा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: डॉक्टर साहब आज हम मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और आज हम चाहते हैं कि रक्तदान के विषय में आपसे कुछ जरूरी बातें की जाएं जिनका लाभ हमारे सभी लिसनर्स को मिल सके। इस क्रम में सबसे पहले हम आपसे आज पूछना चाहेंगे कि रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है।
4: सर्वप्रथम तो सभी डोनर्स को जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्लड डोनर डे की, साथ में बहुत ही साधुवाद क्योंकि उनका दिया गया एक यूनिट रक्त 3 जीवन बचाता है। अब रक्तदान क्यों करें यह एक विषय है जिसपे मैं बताना चाहूंगा कि रक्त का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसे कहीं बना नहीं सकते। ह्यूमन ब्लड है तो ये ह्यूमन से ही आएगा और हर एक 3 सेकंड में पूरे विश्व में एक ब्लड की जरूरत होती है कि एक बंदे को जरूरत है हर एक 3 सेकंड में। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि एक यूनिट से 3 लोगों की जान बच सकती है। और सबसे बड़ा जो महादान कहने का विषय है वो इसलिए कि गिफ्ट ऑफ लाइफ है, आप किसी को जीवन दान दे रहे हो, उससे बड़ा दान तो कोई भी नहीं है। और एक आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में 75 मिलियन लोग जो पूरे एक वर्ष में ब्लड डोनेट करते हैं, 5 लाख फीमेल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से जिनकी डेथ होती है, जिसमें कि 1.5 लाख फीमेल्स खून की कमी की वजह से डेथ होती है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है और उसके लिए हमें और अवेयरनेस की जरूरत है, लोग और डोनेट करें। एक आंकड़ा मैं और बताना चाहूंगा कि जो 80% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें से केवल 20% लोगों को ही ब्लड प्राप्त हो पाता है और जो वॉलंटरी डोनर्स हैं वो करीब 18% है। तो आप सोचिए कितनी और जरूरत है पूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के।
3: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रक्तदान का महत्व बहुत ज्यादा है, और आपने जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए डॉक्टर साहब, उनसे हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे श्रोता भी ये समझ सकेंगे कि रक्तदान का महत्व कितना है और रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन अपने श्रोताओं की कुछ शंकाओं का समाधान हम चाहते हैं कि आज आपके माध्यम से करें। तो सबसे पहला सवाल इस क्रम में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रक्तदान कौन कर सकता है, इसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए उस व्यक्ति की, और वजन से संबंधित अगर कोई इंस्ट्रक्शन हो तो वो भी बताएं।
4: जी, रक्तदान 18 से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति कर सकते हैं, वह स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई बीमारी ना हो, और 45 किलोग्राम से अधिक वजन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के संबंधी भी रिक्वायरमेंट है, जो मेल्स हैं, पुरुष हैं उसमें 12.5 ग्राम पर डीएल से अधिक वैल्यू हो हीमोग्लोबिन की, और फीमेल्स में 12 ग्राम पर डीएल से अधिक वैल्यू हो, तो ऐसे सभी लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके होने पर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है?
4: रक्तदान जो लोग नहीं कर सकते हैं, तो पहले तो आते हैं कि जो लोग जीवन पर्यंत रक्तदान नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग हैं जिनको कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है
3: जी,
4: कि ब्लीडिंग से संबंधित कोई भी समस्या वो लोग नहीं कर सकते हैं, हीमोफीलिया इसमें एक आ गया। इसी तरीके से हार्ट किडनी लीवर बीमारी वाले लोग नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ जिनको कैंसर है वो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनको कि टीबी है, लेप्रोसी है, मेंटल डिसऑर्डर है, एपिलेप्सी है, अस्थमा है, ऐसे लोग भी नहीं कर सकते हैं, और डायबिटीज से ग्रसित वो लोग जो कि इंसुलिन ले रहे हैं वो लोग भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, जिनको हाई बीपी की शिकायत रहती है वो लोग भी नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं कि कौन से लोग 1 साल बाद कर सकते हैं, जिसकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के 1 साल बाद वो कर देगा, जिसको टाइफाइड है वो टाइफाइड ठीक होने के 1 साल बाद ब्लड डोनेट कर सकता है, डॉग बाइट वाले भी 1 साल बाद कर सकते हैं। इसी तरीके से 6 महीने का रिस्ट्रिक्शन जिन लोगों पे है वो लोग हैं जिनको कि कभी मलेरिया हुआ, मलेरिया का ट्रीटमेंट के बाद 6 महीने बाद वो कर सकते हैं, जो टैटू और जिन्होंने बॉडी पियर्सिंग कराई भी वो उन्होंने तत्काल कराई है तो वो लोग भी, उन पे भी रिस्ट्रिक्शन है, वो 6 माह बाद ही कर पाएंगे। ऐसे किसी ने कोई वैक्सीनेशन कराया हुआ है तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो 6 माह बाद कर पाएगा, और किसी ने अगर दांत भी निकलवाया है तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो दांत निकलवाने के 6 माह बाद ब्लड डोनेट कर पाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये लोग ब्लड डोनेट ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के बाद ही कर पाएंगे।
3: डॉक्टर साहब ये समझने के

0: बाद कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, और ये भी समझने के बाद कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति कितना फ्रीक्वेंटली रक्तदान कर सकता है, यानी कि अगर उसने आज की डेट में रक्तदान किया है तो अगली बार वो रक्तदान कब कर सकता है।
1: रक्तदान का एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो ब्लड डोनेट कर रहा है तो 3 महीने बाद ही दोबारा रक्तदान कर पाएगा।
0: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें रक्तदान के विषय में आज आप हमारे लिसनर्स को बता रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप हमारे सभी लिसनर्स को सुनवाते चलें।
1: पल पल

0: डॉक्टर साहब की पसंद पर एक खूबसूरत सा गीत सुनने के बाद एक बार वापस लौट आए आकाशवाणी कानपुर के अपने स्टूडियो में, जहां आज हम बात कर रहे हैं शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण कटियार जी से। और आज बातें हम कर रहे हैं रक्तदान के विषय में, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। आगे बढ़ते हुए आपसे हमारा सवाल ये होगा कि रक्तदान जब किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति से जब रक्त लिया जाता है, तो उस समय किन बातों का ख्याल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी रखना चाहिए?
1: जो रक्त लेने का प्रोसीजर है वे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है, व्यक्ति स्वयं करता है और उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, उससे एक फॉर्म भराया जाता है, उससे एक कंसेंट ली जाती है कि वो अपनी मर्जी से ही रक्त दे रहा है। साथ में साथ उसकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, वेट, क्योंकि ये एक मानक है, उस मानक में ही जब बंदा आएगा तभी वो ब्लड डोनेट कर पाएगा। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पार्ट पे ध्यान ये रखना है कि जो ब्लड डोनेशन के मानक हैं वो मानक के अनुरूप ही बंदा लें ब्लड डोनेशन के लिए, एक बात ये। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्लड लिया जाता है किसी भी बंदे का जिसने डोनेट किया, उसकी जांचें होती हैं।

0: और वो पूरी जांचें होने के बाद भी वो दूसरों को देने के लिए काम में लाया जाता है। कोई अगर ये सोचे कि ऐसे किसी को दे दिया जाता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लड डोनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर बहुत ही सख्त मानक हैं, ब्लड को लेने से लेकर ब्लड को किसी भी नीडी को देने तक।
1: डॉक्टर साहब, रक्तदान के बाद रक्तदाता को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए?
0: जिस भी व्यक्ति ने रक्तदान किया है तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो रक्तदान से पहले क्या करके आए, तो उसके लिए कि उसकी नींद पूरी हुई हो और उसने प्रॉपर मील लिया हो, उचित खाना खाया हो और अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लिया हो कि नहीं भाई हमें कल जाके ब्लड डोनेट करना है, तब वो रिलैक्स होके आएगा। नहीं तो क्या होता है, ब्लड डोनेट करने आया तो उसको एंजाइटी हो गई, कहीं कुछ हो गई, दिमाग में कुछ और सोच रहा है, तो इन चीजों का व्यक्ति को ध्यान रखना है। और इसके बाद जब ब्लड डोनेशन हो जाता है, हार्डली 8 to 10 मिनट्स लगते हैं एक डोनेशन में, उसके बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट करना है, फ्लूड लेना है और फ्लूड 24 घंटे तक लेना है। दूसरी बात यह है कि 1 घंटे तक इसको स्मोकिंग नहीं करनी है, और जब वो नेक्स्ट मील लेगा उसको अल्कोहल नेक्स्ट मील के बाद ही अगर उसको लगता है कि लेना है तो उसके बाद ही लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि लोग डोनेट करके उठे तुरंत निकल गए, एलिवेटर में चढ़ गए, तो वो काम नहीं करना है। ब्लड डोनेशन के बाद 1 दिन तक आपको कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई फिजिकल गेम नहीं खेलना है, इन बातों का ध्यान रखना है ब्लड डोनेशन के बाद।
1: डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेशन के बाद ऐसी कौन सी सामान्य समस्याएं हैं या कहना चाहिए कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है और उनका जब एक बार मैनिफेस्टेशन हो जाए उसके बाद लोगों को क्या करना चाहिए?
0: कभी कभी क्या होता है कि डिजी फील करता है व्यक्ति, डिजी फील करता है तो उसका तरीका यह होता है कि बेड पर लेट गया, उसने फुट इंड अपना ऊपर कर लिया, फुट ऊपर कर लिए तो 5 से 10 मिनट में उसको रिलैक्स फील हो जाता है। कभी कभी क्या होता है उसको चक्कर आके गिर गए, तो उस केस में क्या है उसको फ्लूड लिटाना है, फ्लूड देना है। नॉर्मली ये मान के चलिए कि 1% केसेस में, मतलब 1% केस ऐसे होंगे जिनमें ये समस्याएं होती हैं, वैसे केसेस में कोई भी ऐसा मेजर या माइनर कोई भी ऐसा इशू देखने में नहीं मिलता।
1: डॉक्टर साहब, लोगों को भ्रांति रहती है कि हमने अगर ब्लड डोनेट किया तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी और इस कारण लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आगे अक्सर नहीं आते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी लिसनर्स को बताएं कि एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद जो शरीर से रक्त निकाला जाता है उसकी पूर्ति शरीर कितने समय में स्वयं कर लेता है।
0: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि तमाम लोगों को ये भ्रांति है कि हम रक्त देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी और बनेगा नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता चुका हूँ आपको कि 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है बॉडी में, और जो डोनेशन का मिनिमम ड्यूरेशन है कि एक बार आप देंगे तो 3 महीने बाद ही आपका ब्लड लिया जाएगा, उससे पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जो ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको बॉडी, मतलब आपने ब्लड डोनेट किया तो ब्लड प्लाज्मा बॉडी 24 से 48 घंटे में बना लेती है। इसी तरीके से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 3 वीक्स में बॉडी बना लेती है। जो आपका गया वो कितने देर में आएगा मैं वो बता रहा हूँ, और प्लेटलेट और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं विथ इन मिनट्स बन जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपका 3 से 6 हफ्ते में जो गया वो सब ऑलमोस्ट पूरा हो गया। और मैं बता चुका हूँ कि जो ब्लड देता है उसको देने के 5-10 मिनट बाद भले थोड़ा ऑकवर्ड फील हो, लेकिन उसके बाद उसको एक नई एनर्जी का एहसास होता है, क्योंकि सेल्स नई आ गई, नई सेल्स आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने एक लाइफ का गिफ्ट किसी को दिया है, अगर वो दिमाग में इस लेके चलता है तो वो फीलिंग फिर वर्ड में किसी और चीज में नहीं मिल सकती।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, और बहुत सारी अच्छी बातें आज आपने हमारे लिसनर्स को बताई। चलते चलते हम चाहेंगे कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर अपनी तरफ से कोई एक संदेश आप हमारे सभी लिसनर्स से साझा करें।
0: मेरा संदेश सभी नगरवासियों को और पूरे देशवासियों के लिए यही है कि अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट करें, और ईश्वर ने आपको धरती पे भेजा है अच्छे काम करने के लिए, तो ब्लड डोनेट करके अच्छा काम करें और आप भी जीवनदाता बने।
1: बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे सभी लिसनर्स को दिया कि आप भी जीवन दाता बन सकते हैं। तो हमारी अपील अपने सभी नगरवासियों से और अपने सभी लिसनर्स से यही रहेगी कि अधिक से अधिक मात्रा में आगे आएं और आज प्रण करें कि आप भी जीवन की रक्षा करेंगे ब्लड डोनेशन के माध्यम से। फिलहाल डॉक्टर साहब, आज इतनी सारी बातें, इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे सभी श्रोताओं से साझा करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
0: धन्यवाद दीपशिका जी।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा
1: की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा।
2: एक 103.7 FM पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का कानपुर केंद्र। दोस्तों अब वक्त हो चला है।

आप सुनिएगा प्रोग्राम गाने तराने शाम 6:30 बजे। फिलहाल आज के पॉप टाइम की शुरुआत इस खूबसूरत से गाने के साथ है जिसे गाया है अभिजीत जी ने।

जी हाँ, अभिजीत को अभी आपने सुना है इस बहुत ही खूबसूरत से पॉप सॉन्ग में। और दोस्तों, अगर हम पॉप की बात करें और फिर अलीशा चिनॉय का नाम ना आए तो ज़रा पॉप की बात कुछ अधूरी सी लगती है। तो चलिए, आपको हम एक उनका बहुत ही फेवरेट और मैं कहूँगी कि इंडिया फेम पॉप सॉन्ग है जो हम सबको बहुत पसंद है, आपको सुनवाती हूँ अलीशा चिनॉय की आवाज़। जी हाँ, ये म्यूजिक है बिद्दू की।

जी हाँ, इस सॉन्ग को सुनकर आपके पैर ज़रूर थिरकने लगे होंगे, और अब जो आ रही हैं उनको भी आपने बहुत सुना है और उन्हें बहुत पसंद किया, उनकी मीठी सी आवाज़ को हम आज भी याद करते हैं। जी हाँ, ये हैं हमारी और आपकी फागुनी पाठक।

जी हाँ, और इसी याद के साथ आज के पॉप टाइम को हमें यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन आप कहीं भी मत जाइए, बने रहिए विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ 103.7 FM पर, क्योंकि अब हमारा अगला कार्यक्रम बिल्कुल तैयार है जिसे हम कहते हैं गाने तराने। जी हाँ, सुनने वालों को निधि जैन का प्यार भरा नमस्कार, आदाब और हार्दिक अभिनंदन आप सभी के

सच में दोस्तों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर जो दूसरों के लिए जिए, असल में जीना इसी को कहते हैं। और यही संदेश देता है आज का दिन, विश्व रक्तदाता दिवस, जिस पर एक बातचीत अभी आप सुन ही चुके हैं हमारे यहाँ से, शाम 6 बजे से लेकर 6:15 बजे के बीच। और आज का जो दिन है दोस्तों, वो उन सभी हीरोज़ को सलाम करने का है जो अपना ब्लड यानी कि अपना रक्तदान करके दूसरों को जीवन दान देते हैं। सच में रक्तदान महादान है, क्योंकि आपका खून किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ प्ले कर रही हूँ ये खूबसूरत सा गाना।

सच में दोस्तों, ज़िंदगी जीने का असली आनंद दूसरों के काम आने में ही है। जब हम किसी अनजान इंसान के लिए ब्लड डोनेट करते हैं तो हम मज़हब, जात पात, हर दीवार को तोड़ देते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही रिश्ता बचता है और वो है इंसानियत का। सच में दोस्तों, खून का एक्चुअली कोई मज़हब नहीं होता, वो सिर्फ़ लाल होता है और सिर्फ़ ज़िंदगी का पैगाम लेकर आता है।

सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर। जी हाँ दोस्तों, गाने तराने प्रोग्राम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र से 103.7।

सात एफएम पर। और अभी जिस कार्यक्रम की बात हुई है आपकी फरमाइश, उसे आप सुनेंगे रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो आपकी जो भी मेल फरमाइशें हों, जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं, तो आप हमें झटपट मेल कर दीजिएगा। जो हमने आपको एड्रेस बताया, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, हमारा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है aarkansoemedia@gmail.com। जी हाँ, ये मेल भेजने के लिए है, इसलिए आप हमें फटाफट से मेल कर दीजिएगा। और चिट्ठी लिखने के लिए आप हमारा पता जानते ही हैं और चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की गाने तराने में अभी हमने बात की है आज के खास दिन यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो अगर दोस्तों आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है और वज़न 45 किलो से ज़्यादा है, तो आप भी ब्लड डोनेट करके इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपने आज का हमारा एक विशेष कार्यक्रम था विश्व रक्तदाता दिवस पर, अगर आपने उसे सुना है, तो उसमें भी ये बात बताई गई थी और मैं एक बार फिर से रिपीट मैंने कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे ये बात कि रक्तदान कितना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी के साथ साथ हम अपनी ज़िंदगी को भी एक मकसद दे सकते हैं, है ना। और दोस्तों, इस खास दिन के अलावा भी आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 14 जून 1922 को सिने जगत के अजीमोशान फनकार निर्देशक करीमुद्दीन आसिफ यानी कि के आसिफ का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने मुगले आजम जैसी क्लासी फिल्में बना करके इतिहास रच दिया और अमर हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज पहले आपको हम उनके लिए मुगले आजम फिल्म का ही ये गाना बजाते हैं और उन्हें अपना ट्रिब्यूट देते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इस गाने का पिक्चराइजेशन आपको ज़रूर याद आ गया होगा। बहुत बार ये गाना टीवी पर भी दिखाया जाता है, और इस गाने की खूबसूरती क्या कहें। बस ये एक गाना नहीं, बल्कि के आसिफ साहब की अपने फ़न के प्रति जुनून की जीती जागती मिसाल है। हम सभी जानते हैं कि इस गाने को जो शीश महल का लुक दिया था के आसिफ साहब ने, उसमें कितनी मेहनत लगी थी ये सेट बनाने में, और लाखों रुपए खर्च हो गए थे। तकरीबन 15 लाख रुपए के आसपास खर्च हो गया था केवल ये शीश महल बनाने में। और दोस्तों, उस समय की ये सबसे महंगी फिल्म थी, जो कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी। और इस फिल्म की ख़ास बात ये थी कि इसे बनने में 2-4 साल नहीं, बल्कि लगभग 14 से 15 साल लग गए थे। सच में दोस्तों, के आसिफ साहब उन चंद लोगों में से थे जो पेशे के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए जीते थे। उनके लिए सिनेमा कोई बिजनेस नहीं, बल्कि एक दीवानगी थी, एक इबादत थी। सच में दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन हाँ, अपने निशान ज़रूर छोड़ कर जाते हैं।

दोस्तों, आज गाने तराने प्रोग्राम में बात हो रही है के आसिफ साहब की, और अगर हम उनकी बात करें तो हम पाएंगे कि अगर हम उनकी फिल्में गिनें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में महज 3 फिल्में बनाई। जी हाँ, सिर्फ 3 फिल्में बनाई, और उनमें से पहली थी फूल और दूसरी थी ऐतिहासिक सफलता वाली मुगल-ए-आज़म।

और तीसरी लव एंड गॉड, जो कि अधूरी रह गई और उनका क्योंकि निधन हो चुका था जब वो महज 48 साल के ही थे। और इस फिल्म को दोस्तों उनकी वाइफ ने बाद में पूरा किया, काफ़ी सालों बाद 1986 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। दोस्तों के आसिफ साहब एक ऐसे शाहकार रहे हैं, उनका कहना था कि भाई ख्वाब हमेशा शहनशाह की तरह देखो, और अगर मैं कहूँ तो सच में उन्होंने शहनशाह की तरह ही अपनी फिल्मों को आलीशान विजन दिया। आज भले ही के आसिफ साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब तक दुनिया में सिनेमा रहेगा, भव्यता की बात होगी, जुनून की बात होगी, तब तब इस शाहकार का नाम बड़े अदब से लिया जाता रहेगा। सिनेमा उनकी रगों में बहता था, उनके खून में बहता था। जिस तरह से के आसिफ साहब ने अपने फन से, अपने जुनून से इंडियन फिल्म सिनेमा को एक नया जीवन दिया, वैसे ही दोस्तों हम भी आज विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान का संकल्प लेकर किसी को ब्लड डोनेट करके एक नया जीवन दे सकते हैं। जी हाँ, तो बस दोस्तों आज के गाने तराने प्रोग्राम में इतना ही। के आसिफ साहब को उनकी जयंती पर ये हमारी तरफ से छोटी सी श्रद्धांजलि थी। उन्हें शत शत नमन और दुनिया भर के सभी ब्लड डोनर्स को दिल से सलाम। और के आसिफ साहब के लिए आखिरी में मैं एक छोटा सा गाना प्ले कर रही हूँ, जो कहते हैं ना कि लोग चले जाते हैं और वापस नहीं आते।

जी हाँ, ज़िंदगी के मेले जो है ना दोस्तों, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। जब तक ज़िंदगी चलती है, तब तक धूप छाँव की तरह सुख दुख हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, और ये ना आए तो ज़िंदगी का मज़ा भी नहीं रहता। बहरहाल दोस्तों, ये था आज का गाने तराने कार्यक्रम, आपने सुना अपनी दोस्त निधि जैन के साथ। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं समेटते हैं, लेकिन आपसे रात 9 से 10 एक बार फिर से मिलने आऊँगी आपकी फरमाइश प्रोग्राम में। तब तक कहीं मत जाइए, बने रहिएगा हमारे साथ विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ 103.7 FM पर। हमारा अगला कार्यक्रम है सैनिकों की शौर्य गाथा, जिसे आप सुनेंगे विशेष जयमाला के अंतर्गत अब से बस थोड़ी सी देर में।

0: अपनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश

0: विकास में सहभागी बने।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति

अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए हैं।

हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल 1944 तक वे अस्थायी भर्ती

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों।
5: वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना, सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे।

बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहाँ ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को

0: लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।
1: ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।
1: इंद्रधनुष में साज और आवाज, इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगलू।
2: आती हो? ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगलू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राव भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों

0: रोशनी दे दी है।
1: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
0: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ।
1: अरे न्योता?
0: हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही खा।
1: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊंगा।
0: ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहां नहीं हैं।
1: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
0: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
1: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
0: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
1: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
0: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
1: अच्छा, हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था, और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान लें हम भाई, अपनी खुशी गमी में पूरे गाँव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरह पैसा बहा देते।
0: अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना।
1: हाँ ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई। इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
0: रूप सिंह?
1: हाँ हाँ रूप सिंह।
0: छी छी छी छी छी छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी। अरे उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी।
1: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा
0: है? हाँ बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है समझो।
1: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होंगे।
0: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चों को नाको चने चबवा दूंगा।
1: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
0: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
1: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
0: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते हैं सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा।
0: अरे ओ हो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओ हो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, राम राम।
1: अच्छा राम राम भैया, राम राम।
0: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
1: अच्छा जरूर आएंगे।

0: क्या आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ पुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूआ, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच, अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भागवान है।
3: क्यों नहीं?
2: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? जाओ।
1: अरे मंगरू,
3: मंगरू वो क्या बात है माधो?
1: अरे चौधरी जी आ गए हैं।
3: चौधरी जी?
1: हाँ।

0: देख मैं तो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा उन्हें। अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
1: ठीक है,
0: मैं भी आता हूँ।
2: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
1: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त पे आया। आइए आइए बिना जी।
2: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
1: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
2: मेरी रकम दे रहे हो ना।
1: जी जी वो
2: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
1: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
2: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
1: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
2: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवा आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
1: ओ चौधरी जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पीठ पाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म
2: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
1: चौधरी जी मालिक मालिक
2: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
1: नहीं चौधरी जी नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
2: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
1: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी।
3: भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
2: 3,000।
3: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
2: जी आप?
3: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
2: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
3: अच्छा भैया जय राम जी।
1: पटवारी जी आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
3: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
1: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
3: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
1: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
3: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
1: वो क्या पटवारी जी है?
3: देखो रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
1: पर गलती उसी की पटवारी जी।
3: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
1: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
3: देखो
1: क्या करूँ,
3: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
1: लेकिन
3: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
1: ठीक ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
3: कौन से रुपए भाई?
1: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
3: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
1: काहे?
3: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
1: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
3: अच्छा ये लो मंगरू।
1: ये क्या कागज?
3: हाँ
1: ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
3: मंगरू अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
1: मैं समझ

0: नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
1: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है? ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
0: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
1: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
0: अच्छा, वो किस तरह?
1: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
0: अच्छा,
1: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
0: 11,000?
1: हाँ भाई,
0: सच सच कह रहे पटवारी।
1: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। और रुपया मिल जाने के बाद?
0: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
1: लेकिन अब फजूल खर्च मत।
0: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। हाँ, जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
1: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी से चलिए।
0: आ गए पंडित जी? चलिए, आइए पटवारी जी, आइए
1: आइए। चलो चलो।

कागज के जेवर हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

0: 103.7 FM पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का कानपुर केंद्र।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के

0: विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: ₹140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए

0: श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: The world seeks trusted and reliable partners.
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक

0: बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Yeah.

चुके हैं और रात के 9 बजते ही हमारे सारे दोस्त जितने भी हैं हमारे सुनने वाले वो बिल्कुल कान लगा करके अपने रेडियो अपने मोबाइल सेट्स के पास आ जाते हैं क्योंकि उनका फेवरेट प्रोग्राम आपकी फरमाइश शुरू हो जाता है। जी हाँ, तो बस आपकी पसंदीदा गानों के साथ आपकी दोस्त निधि जैन आ चुकी है आप सबके साथ। तो चलिए आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहले आप स्वीकार करें अपनी दोस्त निधि जैन का प्यार भरा नमस्कार, सादर आदाब और अभिनंदन। और दोस्तों आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ। अभिमान फिल्म का ये गाना है, लीजिए आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद।

जी हाँ, अभिमान फिल्म का ये गाना था, आवाज़ें थी मनहर उदास और लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखने वाले थे हमारे मजरू साहब और संगीत दिया था SD बर्मन ने। दोस्तों, इस गाने के लिए हमारे पास चिट्ठी आई थी रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु, मनी, मीनू, पवन, पार्थ, शिवांश त्रिपाठी, शिवा तोमर, शक्ति और अभिजीत सिंह

सांगा जी की। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा शिवानंद त्रिपाठी जी, ऐसे ही अपने पत्र हमेशा ही की तरह हमारे पास भेजते रहिए, क्योंकि आप हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं और हमें बहुत इंतज़ार रहता है हमेशा ही आपकी चिट्ठियों में। बड़ी खूबसूरत सी फरमाइशें होती हैं, हेलो कानपुर में भी आप शिरकत करते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को बहुत सराहते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक हौसला अफजाई वाली बात है और हम सबका हौसला बढ़ता है। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार विविध भारती के साथ बनाए रखिए। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाड़कर, प्रणिता लाडला टुकटुक, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश सुमित ग्वाड़कर और कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर जिसका उपनाम है परी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए ग्वाड़कर साहब, और आप भी मुझे लगता है जब से हमारी मेल फरमाइशें शुरू हुई हैं तब से आप हमें लगातार अपनी कभी चिट्ठियां भेजते हैं तो कभी आपकी मेल आती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे पास एक और मेल आई हुई है पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन और डी के अलवी जी की। बहुत सारी मेल्स हैं आपकी और मुझे लग रहा है कि अगर आप एक भी मेल भेजेंगे तब भी हमारे पास तक पहुंच जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, हमें मेल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगला जो मेल है हमारे पास वो बुलढाणा वड शिंगी महाराष्ट्र से आया है, अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार का। बुलढाणा इस्लामापुर महाराष्ट्र से ही सहदेव दामोदर और शशिकला दामोदर के साथ सुमेध कुमार जी भी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। बहरहाल जिन दोस्तों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें हम बता दें कि इस समय विविध भारती का कानपुर केंद्र आप सुन रहे हैं 103.7 FM पर और प्रोग्राम चल रहा है आपकी फरमाइश, जिसे पहले कभी आप सुना करते थे 10 से 11 लेकिन अब इसका वक्त हो चुका है 9 से 10 बजे का, जो कि हमें पता चलता है जब आप अपनी कॉल्स लगाते हैं हमारे चैनल पर हेलो कानपुर के लिए, तो हमें पता चलता है कि ये जो टाइम है ये आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है और ज़्यादा कम्फर्टेबल आप महसूस करते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने अभी तक डिनर नहीं किया है तो डिनर के साथ साथ एंजॉय करते चलिए ये बहुत ही खूबसूरत से गाने। और अब हम आपकी फरमाइश प्रोग्राम में अगले गाने के लिए बढ़ते हैं। बढ़िया सा गाना है और जिसने सुनना पसंद किया है, जिसने मेल भेजा है उसने एक बधाई का भी और कहना चाहिए एक शुभकामना भी भेजी है, तो पहले हम आपको गाना सुनवाते हैं और फिर उसके बाद उनका हम मेल पढ़ेंगे।

जी हाँ दोस्तों, बस इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है इस समय, विमेंस क्रिकेट कप इस समय खेला जा रहा है। और जो ताज़ा जानकारी है वो यही है कि इंडिया ने 170 रन बनाए हैं 6 विकेट्स पर। और हमारे एक जो दोस्त हैं जिन्होंने हमें ख़ास तौर पर इस गाने की फरमाइश लिखी थी कि भाई आप हमें ये वाला गाना ज़रूर सुनवा दें, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का, और वो उन्होंने एक हमारे लिए मैसेज भेजा है। एक तो नमस्कार लिखा है, दूसरी टीम इंडिया के लिए लिखा है कि अग्रिम शुभकामनाएँ हैं विजय होने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो बिल्कुल देखिए, आपकी पसंद पर हमने ये गाना आपको सुनवा दिया, और बिल्कुल हम भी सारे ही जितने भी इंडिया वाले हैं वो सब यही दुआ कर रहे हैं, यही विश कर रहे हैं कि भाई ये जो मैच है वो हमारे ही नाम आए। और आपको, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको पता होगा कि अब तक जितने भी मैच इंडिया और पाकिस्तान के रहे हैं तो उनमें से ज़्यादातर में जीत इंडिया की हुई है, और हम भी आज यही उम्मीद करते हैं कि जीत हमारी हो, लेकिन हाँ जो भी हो मैच अच्छा हो। तो बस आपने हमारे पास इतनी बढ़िया सी फरमाइश भी भेजी और अपना मैसेज भी भेजा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये जो गाना था हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से था, नीति मोहन, विशाल दादलानी, के और शंकर महादेवन की आवाज़ें थी, इरशाद कामिल के बोल और विशाल शेखर का ही म्यूज़िक था। तो दोस्तों बहुत सारी ईमेल्स आ चुकी हैं और बस सब प्यार भरे सलाम के साथ हमें मेल करते चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम मेल्स को शामिल करते चलें। ये है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अरुणावानंद, सत्यम, आनंद, और बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। तो आपने अपने नाम ज़रूर सुन लिए होंगे। लिखा है जयराम खोरवाल जी ने होली चौक उत्तम नगर से ही, सचिन, अमन और दीपांशु खोरवाल लिखते हैं कि हमें अभिमान फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगा और आपके चैनल पर हमें बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं। इसमें तो जी बिल्कुल भी कोई शक है ही नहीं, क्योंकि हमारे चैनल से हमेशा ही स्वस्थ मनोरंजन होता है, गाने भी अच्छे होते हैं, बातें भी अच्छी होती हैं। और एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहमदनगर खैगांव खंडवा से, कैलाश फूलमाली, दीपक और समर फूल माली के साथ साथ वेदिका फूल माली, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। नलेवर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस माकर, निर्मला, विशाल, सोपान तायड़े और नारायण इंगले जी का मैसेज हमारे पास आया हुआ है। बहुत सारे दोस्तों श्रोता तो हमारे रेगुलर लिसनर बन चुके हैं कि हमें उनके नाम बिल्कुल ऐसे ही याद हो गए हैं। ये लिखते हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन जी, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना लिखते हैं प्यार भरा आदाब, और निधि दीदी आप खैरियत से हो? बिल्कुल जी, हम एकदम खैरियत से हैं, और जब आप लोगों की हमारे साथ इतनी विशेष जुड़ी हुई हैं तो बिल्कुल हम अच्छे ही होंगे, और दुआ करते हैं कि आप सब भी अच्छे रहें, सेहतमंद रहें और बस खुश रहें, यही हम भी चाहते हैं। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल और नफीसा प्रवीण भी हमारे साथ

लाइव कनेक्टेड हैं इस समय। अच्छी अच्छी फरमाइशें हमारे पास आती चली जा रही हैं और बस मेल्स का बिल्कुल जमावड़ा लगा हुआ है। लिख रहे हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा, आप सबका मेल आ चुका है हमारे पास। चलिए अब प्रोग्राम में हमें आगे गाने भी सुनवाने हैं, तो हम आपको अगला गाना सुनवाते हैं और ये भी गाना बड़ा ही खूबसूरत, आप सबकी फरमाइश। तो पहले गाना सुनते हैं और फिर हम बाकी के मेल्स आपके लिए हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो पारस मढ़ी फिल्म का ये गाना है, लीजिए सुनिए।

जी हाँ, बड़ा ही खूबसूरत सा ये गाना था पारसमढ़ी फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। सुनने की फरमाइश थी महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति ठाकुर, रेयांश, और छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप लिखते हैं कोई भी फिल्म का गाना हमें सुनवाइए, तो हमने आपकी पसंद पर ये गाना आपको सुनवा दिया। सतीश अनेजा जी बड़े ही बोल्ड लेटर्स में लिख रहे हैं, निधि बहना जी नमस्कार, हमारा मेल शामिल कर लीजिए। तो लीजिए, बिल्कुल आपका मेल शामिल हो गया है, और चंडीगढ़ सिटी से आप हमेशा ही हमें मेल करते हैं। बिमल अनेजा जी भी आपके साथ था, उनका नाम लिखा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। इसके साथ ही देखिए, श्रोता जो अभी लाइव कनेक्टेड है हमारे साथ वो है रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। जी हाँ, बस लड्डू से मिठाई का मन हो जाता है खाने का। और एक फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि भाई प्लीज़ बहुत सारे मेल नहीं करिए, नहीं तो आपके दोस्तों के नाम छुप जाते हैं। तो एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके भी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से ये हैं कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ और परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे, आप सभी का बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। आपकी फरमाइश प्रोग्राम इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो फ्रेंड निधि जैन के साथ, और मुझे लगता है आज के भी आपको सॉन्ग्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। डेफिनेटली बहुत सुंदर गाने हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और बढ़िया से गाने की ओर।

जी हाँ, मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गाना आ चुका है आप सबके रेडियो सेट्स पर। आवाज लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी ने से लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है। गाना आपने पहचान लिया होगा फरमाइशी नाम गाने के बाद। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन और सारिका सुतार जी लाइव कनेक्टेड है हमारे साथ।

छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोडके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोडके। जी हाँ, जब तक म्यूजिक चल रही है मुझे लगता है कि मैं थोड़े थोड़े से नाम पढ़ लूँ आप लोगों के।

जी हाँ, और मैं किसका किसका नाम लूँ जिन्होंने एक्चुअली जिनकी फरमाइश पर हमने ये गाना सुना है, वो जिस तरीके से अपनी बात लिखते हैं, जिस तरीके से अपने चिट्ठियाँ भेजते हैं, उनके जो वर्ड्स हैं इंस्पायरिंग वर्ड्स, वो हम सब के लिए जितने भी एंकर्स हैं, आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स पेश करते हैं, उन सब के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन का काम करते हैं। सच में रानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, और इतने खूबसूरत आपके पत्र हमें मिलते हैं, और जिस तरीके से हर पत्र में हमारे किसी न किसी साथी की तारीफ होती है, बात होती है, आपको हर एक का अंदाज़ पता है, और आप उसमें जिस तरीके से हम लोग को संबोधित करते हैं, बिटिया बेटा, बस एकदम लगता है कि हम फेस टू फेस आपको देख रहे हैं, और बहुत आत्मीयता लगती है सच में। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, और बाकी भी जितने भी दोस्त इस समय हमसे कनेक्ट होते हैं 9 से 10, वो सब भी हमारे लिए उतने ही अजीज़ हैं, क्योंकि हर दिन आपको हमारा इंतज़ार होता है और हमें आपका इंतज़ार रहता है। बहरहाल, हम आपके बाकी के भी नाम पढ़ दें, आप सब वेट कर रहे होंगे। ये हैं हमारे रानी साहब, जिनका नाम मैंने पढ़ ही दिया है, मोहम्मद अहमद रानी, अबरार अहमद, शकीला बेगम, अल्तमश अहमद, ए रहमान साहेब हैं, और रवि किशन शास्त्री, सतीश कुमार त्रिपाठी, आशुतोष मिश्रा, सौरभ सोनवानी और एम ए कानपुरी। तो रानी साहब, आपका हेलो कानपुर में भी आज भी आपकी कॉल आई है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से हमसे बात करते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे रेनबो में भी इसी तरीके से अपनी मेल्स भेजें, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही हमारे साथ बहुत सारे दोस्त लाइव कनेक्टेड हैं, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साकेत नगर से रितु निगम जी हमें सुन रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ, समृद्धि, सुअंकर, इन सभी के नाम उन्होंने भेजे हैं। अनिल कटियार जी का आ गया है हमारे पास मेल, लिखते हैं, निधि जैन महोदया जी, सादर सप्रेम नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है, लिखते हैं, आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही आहिस्ता से प्रोग्राम पेश करती हैं आप, शुक्रिया जी। मुझे लगता है, एक तो पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है रात का जो ये समय है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट भागने में मज़ा नहीं है, क्योंकि गानों को जितना ही इत्मीनान से सुना जाए और उसे जितना अच्छे तरीके से बोला जाए, वो उतने ही सुंदर लगते हैं ना, क्योंकि रात का टाइम है, थोड़ा सा खुमारी आने लगती है खाना खाने के बाद। तो बस बहरहाल, आपकी तारीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाम है ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से अनिल कटियार, डिम्पी कटियार, गौरव, सौरव और खुशी कटियार। एक तो आप हमें हमनवा में भी भेजते हैं अपनी मेल, हर प्रोग्राम से कनेक्टेड होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कटियार साहब आपका। बस ऐसे ही हमें हमेशा ही मेल भेजते रहिए, हमें इंतज़ार रहता है। शास्त्री नगर बीट शहर से आशा सपकाल, किशन, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके अभी एक्चुअली मैं नाम इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि उनके नाम कुछ गानों के साथ शामिल हैं, तो इसलिए आपके नाम मैं ज़रूर बाद में पढ़ूंगी, इसलिए आप इत्मीनान बना के रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम गुजरात से, प्रवीण सोनी और लाला सोनी। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है अगले गाने की, क्योंकि लगभग आधा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, आधा अभी बाकी है।

जी हाँ, याराना फिल्म का गाना आ चुका है आप सबके रेडियो सेट्स पर। किशोर कुमार की खूबसूरत सी आवाज़, अनजान साहब के बोल और राजेश रोशन की धुन। सुनने की फरमाइश है हुकुम कर्मकर, सुनीता, हार्दिक प्राची और तनु कर्मकर के साथ साथ गोविंद नगर से प्रतिमा मल्होत्रा।

जी हाँ, याराना फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना था, किशोर कुमार की आवाज़ थी और राजेश रोशन ने इसमें संगीत दिया था। दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं, जय जिनेंद्र जी कैसी हैं आप, हमेशा खुश रहो स्वस्थ रहो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी जय जिनेंद्र जी। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी हमेशा खुश रहें स्वस्थ रहें, इसी बात की हम हमेशा ही दुआ करते हैं, और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई हर्डल्स ना आए, कोई परेशानी ना आए, बस यही दिल से हम भी यही चाहते हैं। ये बात हमें लिखी है मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जीवीएम जैन के साथ आदि जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। नारायण खर्चे जी का एक बार फिर से हमारे पास मेल आ गया है और हम आपका मेल शामिल कर चुके हैं पहले से ही। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत इशरत और जीनत जहां, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, उमर

फिर से प्रभा रानी जयपुरिया ने हमें मेल भेजा है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए अनुरोध करता अगले जो हैं हमारे वो हैं तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रीलाल वर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं हमें सादर नमस्कार मधुर स्मृति। हम तो बस आपकी मधुर स्मृति से ही समझ जाते हैं कि ये हमारे मिश्रीलाल विश्वकर्मा जी हैं। इतनी प्यारी हिंदी लिखते हैं कि बस दिल खुश हो जाता है। और लिखते हैं सधन्यवाद जी, शुभ रात्रि जी, मज़ेदार गीत सुनवाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है मिश्रीलाल जी। बस ऐसे ही हमें चिट्ठियाँ लिखते रहिए, हमें मेल्स भेजते रहिए, हमें हमेशा ही आप लोगों की मेल्स का इंतज़ार रहता है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास जी जुड़े हुए हैं, उनके साथ आशा देवी जी का भी नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ये लिख रहे हैं संभा जी चौक सिडकू न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे लिख रहे हैं कि आकाशवाणी कानपुर कार्यक्रम मैडम हम भी लाइव में जुड़ गए हैं और बढ़िया गाने चल रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कानपुर केंद्र तो हमेशा ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया गाने लेकर के आता है। और लीजिए एक हम अभी मेल और शामिल कर लेते हैं अगला गाना प्ले करने से पहले। यह है मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर लिख रहे हैं हमें किसी भी गाने में शामिल करें। तो बिल्कुल जी, हमने शामिल कर लिया है आपको। भाटापारा दतरेंगी से सोनम बेलदार, फातिमा, आसमा, सरफुद्दीन फ़कीर, वलीउल्ला फ़कीर और डब्लू वली फ़कीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। बहुत सारे हमें नए नाम भी दिख रहे हैं और ये हमें इनकी जगह का नाम दिख गया जी थोड़ा सा। नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से लिखा है सईद खलील मुबीन भाई और एम डी यासीन ने हमें मेल भेजा है और बहुत शुक्रिया लिख रहे हैं। आपका आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, महराज जहां जी जुड़े हुए हैं हमेशा की तरह, आज भी खूबसूरत सा मेल है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब बारी आ गई है आपको एक और गाना सुनवाने की, क्योंकि हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। लीजिए सुनिए पहले ये गाना और फिर बहुत सारी मेल्स शामिल करती हूँ।

जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना है जाने कहाँ। बहुत खूबसूरत सा गाना, मुकेश साहब की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

दोस्तों, इस बीच हम कुछ नाम और शामिल कर लेते हैं। करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजीत। जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक और राज एस डी अंसारी, मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना और कबीर, रेडियो लिसनर क्लब से वैशाली जयपुरिया।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे गाने कभी भी भूल ही नहीं सकते, इतने खूबसूरत ये गाने बने हैं, इतना खूबसूरत इनका संगीत बना है। बहरहाल ये खूबसूरत सी फरमाइश थी कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय प्रांजल, और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति, नवनीत राय। इसके साथ ही जाकिर मंसूरी साहब लिखते हैं कि आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता निधि जैन जी नमस्कार, आज के शानदार और लाजवाब कार्यक्रम में किसी भी गाने में शामिल कर लें। तो जी हमने आपका नाम इस गाने के लिए शामिल किया है और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपको भी है। आप लिखते हैं आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति काबिले तारीफ है, हमारी ओर से हार्दिक बधाई, और आप भी हमारे बड़े ही पुराने श्रोता हैं। अब आपकी चिट्ठियाँ मुझे कम मिल रही हैं, लेकिन हाँ अच्छा लगता है कि आप मेल्स के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं। बाजार रोड मुंगीसापुर के ये हमारे दोस्त हैं, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। रामेश्वर कठेरिया जी का भी मेल आ गया है और लिख रहे हैं कि हम प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, 9 बजे मेल किया था, मेल पहुंच चुके मगर मेल शामिल नहीं हुआ जी, क्योंकि क्या होता है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है रामेश्वर जी। बहुत बार बहुत सारे मेल्स होते हैं और मेल नीचे हो जाते हैं जिन्होंने पहले भेजा होता है, लेकिन अच्छा लगा कि आपने सब्र किया और देखे प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, हमें भी इंतज़ार रहता है और हमें पता है कि हमारे कितने दोस्त हमसे बिल्कुल अधीरता के साथ जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आपके नाम हम पढ़ते हैं, मुंगीसापुर कानपुर देहात से ही रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती, कमलेश, इनकी पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू, समस्त कठेरिया परिवार, और लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल भी धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, आप सब हमारे बहुत अजीज़ हैं और बस हमें ऐसे ही इंतज़ार रहता है। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राजा।

अरोड़ा प्रकाश, अरोड़ा चंदन, अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का मेल आ चुका है हमारे पास। बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे नए श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं लगातार। डाकघर गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर लिखते हैं कोई भी एक गाना हमें सुनवा दें। इनके साथ साथ इस गाने के लिए हमारे पास एक और चिट्ठी थी, अंधेरी बावली मूसा नगर से माजदा बेगम, एम नाइम, एम खालिक, एम शब्बीर, रफत हबीब, अली हैदर हमराही, ये हैं हमारे रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, इनके नाम उन्होंने लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा ही आप लोग हमें पत्र लिखते रहते हैं और ऐसे ही लिखते रहिए, पत्र भी लिखिए, मेल्स भी आपकी शामिल होती हैं। एक मेल मैं और शामिल कर लेती हूँ और उसके बाद आपको मैं अगला गाना सुनवाऊँगी। बहुत ही अच्छा सा गाना ये भी है, ये है बड़ा भैरमपुर कानपुर नगर से संदीप कुशवाहा, रंजीत कुशवाहा, राजवीर कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप कुशवाहा जी, आपकी चिट्ठियाँ अब हमें नहीं मिल पा रही हैं, क्या बात है, लेकिन आपका मेल मिला, अच्छी बात है। डोंडी लोहारा से प्रभा जामोरिया, अनुश्री जामोरिया और पूजा डॉली, चंद्रनगर सहारनपुर से सोनाली डोमिन और पथिक डोमिन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

जी हाँ, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गाना है और किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक अलग ही संगीत। और इस गाने के लिए जिन दोस्तों ने हमें मेल किया है वो हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितेक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर आकाशदीप, कालका से शुभ्रचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज।

जी टी डी मल्होत्रा साहब, अब मुझे लगता है कि आपको कोई शिकायत नहीं रही होगी क्योंकि आपकी पसंद का गाना भी बज चुका है और मेल तो मैंने आपकी पहले ही शामिल कर ली है। इनके साथ साथ फागुराम यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव कांकेर से, इनके साथ ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। ये लिख रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर रतनमाला कुमकुम कुमारी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति निधि दीदी, बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ आप सबकी कि आप लोग इतना हमें मैसेज करते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी लिखते हैं, अच्छे गानों की फरमाइशें करते हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जुड़े हुए हमारे साथ, और ये लिख रहे हैं लीजिए सरगुजा मैन पार्ट से रुबीना थापा, रेशमा कुमारी डब्लू, फातिमा, सोनम कुमारी वली थापा, आदिबा, आसमा और कुमारी उल्लाह थापा ने एक छोटा सा हमें उलाहना भी दिया है कि कितनी देर इंतज़ार करें, कार्यक्रम ख़त्म होने को है और हमारा नाम नहीं शामिल हुआ। बिल्कुल भाई, आपकी शिकायत जो है ना वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास समय थोड़ा सीमित रहता है और एक घंटे में हमें आपको गाने भी सुनवाने हैं और आपके नाम भी लेने हैं, तो जिन लोगों के नाम अक्सर आते हैं तो वो लोग थोड़ा सा रुक सकते हैं ताकि नए दोस्तों को मौका मिल जाए, उनके भी नाम शामिल हो जाएं। ये है ऐसे ही एक हमें नाम दिख रहा है स्टेशन रोड कानपुर से, याकूब, आसमा कुरैशी, यूसुफ, असलम, अकरम और कलीम आसमा कुरैशी और सलीम आसमा कुरैशी लीजिए। और जिन लोगों का नाम आ गया है कृपा करके अब और ज़्यादा हमें मेल मत भेजिए, देखिए फिर आपके ही दोस्त हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि लीजिए उनका नाम नहीं शामिल हुआ है ना। लेकिन मुझे जितने भी नाम दिखते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम शामिल कर लूँ। मित्रनगर बीट शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा अदिति, वैभव शिंदे और हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे के साथ साथ, जो पहले हमने आपको एक गाना सुनवाया था मेरा नाम जो कर, उसके लिए भी एक हमारे पास मेल आई है, वो है बर्रा से श्री आरसी कटियार, आरसी शर्मा जी, जी हाँ। और देखिए अब्दुल गफ्फार डावर जी का भी मेल आ गया है हमारे पास, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे जी नागचुन रोड संजय कॉलोनी से हमें भेज रहे हैं मेल। बसंत कुमार सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने, अनविका बेबी, तो बहुत शुक्रिया। और बस अब एक गाने की गुंजाइश बाकी है, एक गाना आपको सुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके कुछ और नाम अगर रह गए हों तो हम ज़रूर शामिल कर लें।

जी हाँ, खामोशी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार की धुन। और इसे सुनवाने के लिए हमारे पास चिट्ठी आई कस्बा अमरोधा उत्तर प्रदेश से, अब्दुल जब्बार, राइम तारिक, आरिफ, आकिब, सईद अनवर, माजदा बेगम, आयशा, आयजा, अरफा, ग्रीन रोड अकबरपुर से, अमीर बाबू, उमाज राइन और रेशमा बेगम, जब्बार मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब।

जी हाँ, आज की शाम, आज की रात भी बहुत खूबसूरत है और बस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। उससे पहले हम कुछ मेल्स पढ़ लेते हैं। शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी लिखते हैं कि आकाशवाणी कानपुर हमारे दिल के बहुत करीब है। जी, आप सब भी हमारे दिल के बहुत बहुत करीब हैं। और लिखते हैं कि निधि जी, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ बहुत ही शानदार है और आपका स्वभाव भी बहुत शांत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक और बात लिखी है कि आप ऐसे ही खुश रहिए और सबको खुशियाँ बांटते रहिए। तो बस यही दुआ मेरी भी आप सब के लिए है हमेशा ही, कि बस आप सब खुश रहें, खुशियाँ आपको मिलती रहें और आप खुशियाँ बांटते रहिए। तो बस इसी के साथ आज का आपकी फरमाइश प्रोग्राम का सफ़र यहीं तक। अपनी दोस्त निधि जैन को दीजिए इजाज़त। जल्दी ही फिर होगी मुलाकात, मगर सुनते रहिए विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सब हमारे बहुत करीब हैं और चलते चलते मुझे लग रहा है मैं दो नाम और पढ़ लूँ। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूलत, नेहा जैन, दीपक और मयंक, चेतन नाहटा और प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले जी का भी मैसेज है हमारे पास, गौतम नगर जिला नांदेड़ से। लेकिन बस अब और नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया आपकी फरमाइश का। लेकिन अगला कार्यक्रम है छाया गीत, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यानी विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: 103.7 FM पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का कानपुर केंद्र। आइए सुने कार्यक्रम छाया गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है।
3: इसका सोल्यूशन
2: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
3: नेचुरल है।
2: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
4: उसकी बात से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।
0: जी, आज का छाया गीत आप सुन रहे हैं यूनुस खान के साथ।

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है, दर्द और सुकून का ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
1: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
2: आँखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं, क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती भारत

0: का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने

0: बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

यह आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब संपन्न होता है। कल प्रातः 5:50 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।

यह आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब संपन्न होता है। कल प्रातः 5:50 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।